मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तिथि 14, तदनुसार 4 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: जीवन में जो कुछ भी स्थितियां हैं उन्हें खेल खेल में निभाया जाए तो हम देखेंगे कि हमारा दुख भी सुख में बदलेगा। ये जीने के अंदाज हैं जो मनुष्य को सीखने को मिलते हैं शास्त्रों से, सत्संगों से और साधकों के नज़दीक बैठने से। जैसे जैसे हम अपने दोषों को छोड़ते हैं हमारा बल बढ़ता जाता है, हम छोटी मोटी बाधाओं से पार होते जाते हैं, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है और आत्मिक बल भी बढ़ता है। कहा जाता है मानव परिस्थितियों का दास है, यानी कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और वो जिस प्रकार चाहती हैं मनुष्य को चलाती हैं। हम परिस्थितियों के मकड़ जाल में उलझते जाते हैं, लेकिन यदि परिस्थितियों को हम भाग्य का एक खेल मानकर देखें और उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करें, उनसे संघर्ष करें, विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य न छोड़ें, तो हम पाएंगे कि हमारी जो बाधाएं अभी हमें बहुत ही कठिन लग रही हैं वो बाद में आसान दिखेंगी। भगवान सच्चिदानंद सदगुरु के रूप में मानव की शक्ति के स्रोत होते हैं। जीवन में मनुष्य को सत्य, दान, कर्मठता, दया, क्षमा जैसे सद्गुणों को अपनाते हुए किसी की निंदा नहीं करना, जिसे अनुसूया कहते हैं, इस गुण को अपनाना चाहिए। किसी के गुणों की प्रशंसा करें, निंदा करने की प्रवृत्ति से बचें, सद्गुण के ग्राहक बने, इसे कभी छोड़े नहीं। जो सद्गुण हैं वो मानव की महान शक्तियों के स्रोत हैं। विशेष करके क्षमा करने का जो गुण है

0: वो मनुष्य को बहुत ऊंचा उठा देता है। वैसे कहा गया है, क्षमा उसी भुजंग को सौंपती है जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। कहने का आशय ये है कि क्षमा यदि आप करते हैं किसी को, तो ये भी ज़रूरी है कि आपके अंदर वो शक्ति हो कि आप किसी का नुकसान कर पाए, तभी आपको क्षमा शोभा देती है। यानी कि अपने व्यक्तित्व को, अपने आत्मबल को इतना अधिक बढ़ाना है कि हम में ये आत्मसम्मान का भाव आ जाए कि हम किसी को क्षमा करने के गुण से आप्लावित हो जाएं। मनुष्य के अंदर जब ये गुण आ जाता है तो व्यक्तित्व में चमक पैदा हो जाती है। मनुष्य को सद्गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। बनावटी जीवन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम इससे जितना ही बचेंगे उतनी ही शांति की ओर जाएंगे। हमारी ज़िंदगी जितनी बनावटी, दिखावटी, कृत्रिम होगी उतने ही हम अशांत रहते हैं, और हम जितने सीधे, सरल, सच्चे ढंग से जीवन निर्वाह करते हैं उतने ही शांत रहते हैं। आवश्यकताएं तो अनंत हैं, कभी समाप्त हो सकती हैं क्या? आज हमें कहीं अगर एक बित्ता जगह मिल जाए तो हम एक हाथ की कामना करते हैं, एक हाथ मिल जाए तो 10 हाथ की, और ये हमेशा बढ़ती जाती है। ज़रूरतें कभी सिमटती नहीं, सदैव सुरसा की तरह मुँह फाड़े रहती हैं। ज़रूरत है कि इसे हम छोटा करें, तब हम जीतेंगे। इससे जीवन की छोटी छोटी कमजोरियाँ घटेंगी, एक एक करके समाप्त होती जाएंगी। हमारी कामनाओं का जो आवेग है उसे अगर हम रोक लें तो आगे बढ़ते जाएंगे। अपने अभिमान को विनम्रता से जीतना होगा, उन्नति होगी। ईर्ष्या द्वेष को सम्यक दृष्टि से देखना होगा, सब अपने नजर आएंगे। इस दुनिया में कौन पराया है? सब तो उसी आत्मा के अंश हैं, तो फिर बैर किससे करना? प्रसन्नता यहीं शुरू होती है, भक्ति यहीं शुरू होती है। परिस्थितियां जो भी हो उनके साथ तालमेल बिठाकर आवश्यकताओं को कम करते जाएं तो सुखी होने का इससे उत्तम मार्ग कोई दूसरा नहीं है, और इसी को भक्ति प्राप्त करने का साधन मानते हैं। ये पहली सीढ़ी है ईश्वर को पाने की। ऋषि मनुष्यों ने सूत्र कहा है, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आवश्यकताओं को सीमित करें। मानव जीवन में सद्गुणों का बड़ा महत्व है। गुणों को प्राप्त करें, क्रोध को जीतें, बैर का परित्याग कर दें, कामनाओं का त्याग कर दें। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, ईश्वर की ओर जाने का रास्ता यही है। आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक प्रसारण, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय है कृषि के आधुनिक एवं उन्नत कृषि यंत्र, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सविता कुमारी।
2: आजुक कृषि चर्चा अब सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, हमरा लोकन के आधुनिक व उन्नत कृषि यंत्रक व्यवहार करबाक चाही, तखने मनोनुकूल उपजा लऽ सकब। कृषि यंत्रक माध्यम सँ खेती कयला सँ श्रमक बचत होइत अछि, संगे पूँजीक बचत सेहो होइत अछि, ओ समयक बचत तऽ होइते अछि, इत्यादि कतेको प्रकारक लाभ एहिसँ होइत अछि। कृषि यंत्रक व्यवहार कुशलतापूर्वक करबाक चाही, तखने एकर सभक उपयोग कऽ सकब। सभ कृषि यंत्रक अपन अपन महत्व अछि, जाहिमे सँ किछु मुख्य कृषि यंत्रक चर्चा कऽ रहल छी, जेना रीजर, मोल्ड बोर्ड हर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर इत्यादि। रीजर, एहिसँ खेतमे क्यारी ओ आरि बनाओल जाइत अछि, जेना कुसियार, आलू इत्यादि फसलक आरिके लऽ सकैत छी। रीजर दू प्रकारक होइत अछि, सीनियर रीजर ओ जूनियर रीजर। हमरा लोकनि सीनियर रीजरसँ खेतमे लागल ठाढ़ ओ पाँतीमे लागल फसलक जड़िपर माटि चढ़ेबाक काज लैत छी, आओर जूनियर रीजरसँ खेतमे लागल फसिलमे नाली बनेबाक काज लैत छी। ई बनाओल गेल नालीक व्यवहार नाली विधिसँ पटौनी करबामे कयल जाइत अछि। मोल्ड बोर्ड हर, एहिसँ कम अवधिमे समुचित रूपसँ खेतक जोताई कऽ सकैत छी, हरियर खादके खेतमे मिला सकैत

0: पक्षी सङ्ग सङ्ग ई गहीर जड़िवला घासके सेहो निकालैत अछि। डिस्क हैरो एहि कृषि यंत्रक व्यवहार हमरा लोकनि खेतक माटिक ढेपाके तोड़बामे आओर माटिके हल्लुक करबामे करैत छी, सङ्गहि माटिके भुरभुरी बनाबामे सेहो ई काज अबैत अछि। कल्टिवेटर ई दू प्रकारक होइत अछि, एकटा पाँच फाड़वला आ दोसर तीन फाड़वला। कल्टिवेटरसँ हल्लुक माटिक जोत खेतमे कयल जाइत अछि आ पाँच फाड़वला खेतक माटिके फसिलके बाउ करबा योग्य बनाओल जाइत अछि। एतबे नहि, तीन फाड़वलासँ पाँतिमे लागल फसलक कमौनी निकौनी कयल जाइत अछि। एकरामे ट्यूब लगा कऽ खेतमे फसलक बीयाके बाउग सेहो कयल जा सकैत अछि, जेना गहूँम, बूट, मकई इत्यादि। रीपर ई कटनीक काजमे व्यवहार कयल जाइत अछि। धान ओ गहूँमक फसलक खेती एहि कृषि यंत्रसँ कऽ सकैत छी। ई दू प्रकारक होइत अछि, एकटा पावर टीलर चलित आओर दोसर ट्रैक्टर चालित। थ्रेसर, एहिसँ फसलक दौनी कयल जाइत अछि। एकरा चलयबा काल सतर्कता ओ सावधानी राखऽ पड़ैत अछि। ट्रैक्टर ई कृषिक आधुनिक ओ बहुउपयोगी यंत्र अछि। एकरासँ कतेको प्रकारक काज लैत छी, जेना खेतक जोताई करब, फसलक दौनी, यंत्र चलायब, बोझ ढोअब इत्यादि। एकरा सदत निर्धारित गति सीमामे चलेबाक चाही, ओ एकर उचित रख रखाव करबाक चाही, किया तऽ एहिमे जे कोनो असावधानी होयत तऽ एहिसँ अहाँके जान जा सकैए। तैँ ट्रैक्टर चलेबामे कुशल हेबाक चाही। एहिके सङ्ग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय था कृषि के आधुनिक एवं उन्नत कृषि यंत्र, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी सविता कुमारी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर

0: आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
3: दांतों में कनकनी के कारण दांत को 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग जो मुंह के अंदर दिखाई पड़ता है उसे क्राउन कहते हैं, तथा जो भाग मसूड़े के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। क्राउन वाला भाग इनामेल से ढका होता है तथा जड़ सीमेंट से ढका रहता है। इनामेल शरीर का सबसे बड़ा संरचना है। जब किसी कारण से इनामेल के संरचना में परिवर्तन आ जाता है अथवा सीमेंट अपने वास्तविक ढांचा में से परिवर्तन हो जाता है तो दांतों में कनकनी होने लगता है। इनामेल तथा सीमेंटम के संरचना में परिवर्तन के कई कारण है। गलत तरीका से ब्रश करना। दांतों की सफाई के लिए ब्रश को अपने मसूड़ों पर 45 डिग्री कोण पर रखकर गोल गोल घुमाते हुए हल्की मालिश करना चाहिए। ब्रश नम मुलायम होना चाहिए, लेकिन इस बातों का ध्यान नहीं देने पर दांतों में घिसावट आता है तथा एक समय के बाद दांत की ऊपरी सतह इनामेल नष्ट हो जाता है। ब्रश करने के लिए समय अवधि, दांतों की सफाई करने के लिए घंटों ब्रश करना जरूरी नहीं है। इसके लिए 2 से 5 मिनट ही उपयुक्त है। अधिक समय तक ब्रश करने से दांतों में तथा मसूड़ों में घिसाव आने लगता है और ब्रश को 1 महीने में बदल देना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल करते करते ब्रश के ब्रिसल कठोर हो जाते हैं जो कि इनामेल और मसूड़ों के लिए हानिकारक हैं। दांतों की सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली पाउडर, दांतों की सफाई के लिए लाल मंजन, काला मंजन या किसी भी तरह का पाउडर दांतों के लिए हानिकारक है। इन मंजनों में बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे दांतों पर बहुत खराब असर पड़ता है। इन पाउडर को निकोटीन मिला दिया जाता है जिस

0: से इनके लिए निर्माता विकसित जिसके लिए एडॉप्ट विकसित हो जाते हैं, बिना इसके इस्तेमाल ही संतुष्टि नहीं मिलती। इन पाउडर के नियमित इस्तेमाल से दांत एवं मसूड़ों में घिसाव आता है, इसीलिए हमेशा पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। मसूड़ों की बीमारी के कारण मसूड़ों के वास्तविक ढांचा में परिवर्तन आ जाता है, जिससे सीमेंटम मुंह के वातावरण में मिल जाता है और सीमेंटम के स्नायुओं का कुछ भाग होता है, जिससे जब भी ठंडा या गर्म कुछ भी मुंह में आता है इसे कनकनी होने लगता है। दांतों की ऊपरी सतह घिसने के कारण खाना खाते समय गलत ढंग से ऊपर या नीचे के जबड़े का इस्तेमाल करने से दांत के ऊपरी सतह का घिसावट आने लगता है तथा कुछ समय पश्चात दांत का ऊपरी सतह जो कि एनामेल कहलाता है घिस जाता है। एनामेल के नीचे का सतह डेंटिन कहलाता है। डेंटिन में स्नायु का संचार होता है। एक बार डेंटिन मुंह के वातावरण में आ जाता है तो किसी भी प्रकार का ठंडा या गर्म खाने पर कनकनी होने लगता है। दांतों में कीटाणु या कीड़ा लगने के कारण दांतों की सड़न का असली कारण है प्लाक। प्लाक के भीतर मौजूद कीटाणु मुख्य रूप से शक्कर और भोजन में मौजूद स्टार्च पर ही पनपते और बढ़ते हैं। ये कीटाणु एसिड तैयार करते हैं जो धीरे धीरे दांतों का इनामेल नष्ट करके दांतों में गड्ढे या कैविटी तैयार कर देते हैं और कैविटी बनने के कारण दांत की दूसरी सतह जो डेंटिन कहलाता है मुंह के वातावरण में आ जाता है और डेंटिन के मुंह के वातावरण में आते ही ठंडा और गर्म खाने पर कनकनी होने लगता है। दांतों में कनकनी के निदान। दांतों में कनकनी को रोकने के लिए विशेष प्रकार के पेस्ट या माउथवाश आता है। इन पेस्टों एवं माउथवाश के सेवन से आराम मिलता है क्योंकि इसे रासायनिक पदार्थ होता है जो कि दांत के सतह पर सुरक्षा कवच बनाता है। नष्ट या खराब हो चुकी दांतों की बनावट को विशेष प्रकार से सीमेंट के द्वारा फिलिंग करने से दांतों की कनकनी से छुटकारा पाया जा सकता है। फ्लोराइड का इस्तेमाल दांतों के आवरण में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है जो उन्हें मजबूत बनाता है और सड़न से बचाता है। फ्लोराइड का उपयोग दांत सड़ने से बचाने का एक श्रेष्ठ उपाय है। फ्लोराइड टूथपेस्ट से नियमित दांत का सफाई करनी चाहिए। ब्रशिंग। नर मुलायम ब्रश को अपने मसूड़ों पर 45 डिग्री कोण पर रखकर गोल गोल घुमाने एवं मसूड़ों पर हल्की मालिश करें। इस तरह धीरे धीरे दांतों की बाहरी और भीतरी दोनों सतह साफ करें। ब्रश दिन में दो बार करें तथा 2 मिनट तक ही करें। इससे दांतों में घिसावट नहीं आएगा और दांत की सही सफाई भी हो जाएगी।
1: दांतों में कनकनी, कारण और निदान। इस विषय पर आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार थापड़ से। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं समूह स्वर में गाया गया ये देशगान।

नारायण मिल जाएगा। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

तुलसी की रामायण बोले। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

0: सुरेश वाडेकर और कविता पौडवाल के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे ए हरिहरन को।
1: एपिसोड नंबर 397।

भगवान शंकर के शाप के कारण शूद्र कुल में जन्मे काकभुशुंडी को हजार योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ा। अंतिम बार वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और इसी जन्म में उन्हें श्री राम के अनन्य भक्त होने का सुअवसर और गौरव प्राप्त हुआ। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर लोमश ऋषि वटवृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति और उपासना किया करते थे। काकभुशुंडी जो अब ब्राह्मण कुलवंशी थे लोमश ऋषि के पास पहुंचे और उनसे सगुणोपासना का मूल मंत्र देने की प्रार्थना की ताकि अयोध्या जाकर स्वयं अपनी आंखों से श्री राम का धाम देखकर अपना जीवन सफल करें। किंतु लोमश ऋषि ने सगुण मत का खंडन करते हुए निर्गुण ब्रह्म का निरूपण आरंभ कर दिया। उत्तर में ब्राह्मण ने सगुण मत का निरूपण किया और अपने मत के प्रतिपादन में वे ऋषिवर से वाद विवाद पर उतर आए। इनकी हठधर्मिता से लोमश ऋषि को क्रोध हो आया और इनकी टाए टाए सुनकर उन्होंने इनको चांडाल पक्षी अर्थात कौवा हो जाने का शाप दे दिया। ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

ब्राह्मण ने नतमस्तक होकर ऋषिवर का शाप स्वीकारा और कौवा होकर सहर्ष वहां से उड़ चले। ऋषि के प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि ये जानते थे कि सभी क्रियाओं के मूल में रघुनाथ जी की प्रेरणा होती है।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में स्वर ए हरिहरन का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:10 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 10:00, 12:00, 1:15 पर और अपराह्न 2:30 पर। दिन के 11:00 समय होगा उपशास्त्रीय संगीत का। कलाकार होंगी धौंधुताई कुलकर्णी। महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे आज दिन के 12:30 पर। अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। शाम 5:00 हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं के लिए हमारा कार्यक्रम युववाणी। विद्यापति गीतों का आनंद आप लेंगे संध्या 6:10 से। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद। सांध्यकालीन दैनिक कार्यक्रम गाम घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जागरूक गाम। प्रसारण समय होगा 6:30 से। खेती गृहस्थी, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:00। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे 7:52 पर। रात 8:15 पर समय होगा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र।

0: व्यक्ति कृतवान् राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन् गृहमंत्री अमितशाह तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः सर्वैः नेतृभिः शोक संतप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता इति वार्ताः
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री

0: ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोतागण के आजुक एहि अंक में हम प्रवीण हमरा सने कयाम भाई नमस्कार करै छी।
1: जी हाँ बिल्कुल, और श्रोताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार।
0: और सबसे पहले कार्यक्रम के शुभारंभ सब दिन हम सब करै छी एकटा सुंदर सा विचार संग। आजुक विचार रहीम से लेलहुँ हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पै फिर नहीं जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहला ये दो पार्टी के एक संदेश छे, लेकिन एहि में जे गूढ़ रहस्य अछि जे जीवन के सार होइत अछि, आपस में भाईचारा होय, प्रेम भाव होय, सद्भावना होय, बनाबा में बहुत समय लगे छे, वर्षों बरस लग जाए छे, लेकिन जखन टूटे के घड़ी अबै छे तखन क्षणिक नहीं लगे छे, और ओहि के बाद जे प्रयास होइ छे तो ओहि में एकटा ने एकटा गांठ रहिए जाए छे। तैं हमरा अहाँ के ई कोशिश हेबाक चाही व्यवहार में, बोलचाल में, जे हमेशा प्रेम भाव बनल रहे, आपस में सद्भावना बनल रहे, एक दूसर के सहयोग से हम सब आगा बढ़ी, वह निक होइत अछि, बाकी सब मिथ्या अछि।
1: जी हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल रहीम ने सही कहा, और बिल्कुल इसको अपने जीवन में हमें ढालने की ज़रूरत है कि हम जिंदगी में जीवन में कुछ भी करें, अपने लफ्ज़ को, अपने अपना जो बोलने का अंदाज़ है उसको ऐसा रखें ताकि दूसरों को सुनने में अच्छा लगे। और रिश्तों को बरकरार रखने में ये ज़रूरी है कि हम अपनी मर्यादा को में खो नहीं जाएं, और अपने दिलो दिमाग को, अपने क्रोध के को, अपने गुस्से को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप रिश्ते के हर उस पहलू को जीत सकते हैं। ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से को, जहां जिन चीज़ों से आपको गुस्सा आता हो, आपके रिश्ते ख़राब होते हों, वहां पर आप अपनी वाणी को, आप अपने शब्दों को बिल्कुल मिठास के साथ आगे बढ़ें और उस रिश्ते को बटोर कर रखें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब प्रस्तुत है आज के इतिहास में क्या कुछ खास है, इस पे एक नज़र डालते हैं। 4 जून 1944 को इसी दिन चीन में हुए तियानमेन स्क्वाटर नरसिंहार और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में अमेरिकी सेना के प्रवेश जैसी बड़ी घटनाएं आज ही के दिन हुई। हर साल इस दिन को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन 1845 में मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने रोम में प्रवेश किया।
0: इछल आजुक दिन के इतिहास के किछ अंश, इतिहास में तो बहुत किछ होइत अछि, ओकरा सबटा प्रश्नै संभव नहि अछि। कार्यक्रम के आगा लऽ चलै छी और आप सुनै छी एकटा सुंदर सन मैथिली गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप मैथिली सुगम संगीत सुन रहे थे और उम्मीद है कि ये बिल्कुल अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर बना सकें और श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे और सारी चीज़ों को हम समय के साथ यूं ही

0: समेट कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, आज भी हमारा कुछ ऐसा ही इरादा है। समय के साथ यूं ही चलते रहना चाहिए। और अब समय के साथ चलते हुए आकाशवाणी दरभंगा से प्रस्तुत है हालचाल। हालचाल प्रस्तुत करेंगे प्रवीण कुमार झा।
1: नमस्कार, हालचाल संग हम प्रवीण कुमार। आइ सँ बस सब में किराया भाड़ा बढ़ल। सरकारी बस सहित निजी बस किराया में परिवर्तन भेल। लहरिया सरायसँ पटना साधारण बस भाड़ा 230 रुपया और एसी बस भाड़ा 312 रुपया भेल। कुशेश्वर स्थान सँ पटना एसी बस भाड़ा 422 रुपया भेल। दरभंगा सँ मुजफ्फरपुर के भाड़ा 90 रुपया छल जे 104 रुपया भेल। दरभंगा सँ लोहा के भाड़ा जे 116 रुपया छल ओकरा बदला में 133 रुपया भेल। प्रायः सब बाट पर बस भाड़ा में किछ न किछ बढ़ोतरी भेल अछि। आइ सँ ई बढ़ोतरी भाड़ा लेल जायत। बाट सुरक्षा हेत बनाओल गेल स्पीड ब्रेकर सँ बढ़ि रहल अछि सर्वाइकल मरीज। प्रायः बाट पर 300 से 400 मीटर पर कतौ कतौ तो अहू सँ कम स्पीड ब्रेकर अछि, जाहि कारण बाट सुरक्षा तो होइत अछि मुदा ओकर जे दोसर इफेक्ट से सेहो आम जे गाड़ी वाहन चलबै छथि हुनका पर होइ छनि। प्रायः देखल गेल अछि जे बाट रोड ब्रेकर जे होइत अछि बिना कोनो मापदंड के बनि जाइत अछि। आब तो इहो देखल गेल है जे ग्रामीण एरिया में जे बाट बनैत अछि ओहि में घरे घर लोक अपन रोड ब्रेकर बनेने जा रहल छथि। कारण बाट सुरक्षा तो भ रहल अछि लेकिन ओकर दुष्परिणाम ई भ रहल अछि जे सर्वाइकल के मरीज बढ़ि रहल अछि। किया तो वाहन तो आजुक युवा और संग हुनका संगे प्रौढ़ो सब चलबै छथि, महिलो सब आब वाहन चलवा लग जे कोनो तरहक बिना बोर्ड के रोड ब्रेकर दे गेल अछि ओ यातायात नियम के विरुद्ध होइत अछि। रोड ब्रेकर जतय पड़ैत अछि ओहिठाम सँ पहले यातायात नियम कहैत अछि जे सुरक्षा बोर्ड के जानकारी हेबाक चाही, जकर अभाव में बहुतो चालक जे होइ छथि से हुनका जोर सँ झटका लगै छनि और ई सर्वाइकल जे से बढ़ैत रहैत अछि। एहि पर ध्यान देनाइ अति आवश्यक अछि। देखल गेल प्रायः अपना सब मिथिलांचल एरिया में मधुबनी दरभंगा मोतिहारी सीतामढ़ी समस्तीपुर बेतिया आदि आदि शहर के मुख्य बाट पर रोड ब्रेकर तो अछि लेकिन यातायात नियम के बोर्ड किछ नहीं टांगल अछि, आमजन के लेल समस्या बनि रहल अछि। बहुतो स्पीड ब्रेकर कानून के द्वारा हटाएल गेल अछि मुदा एखनो बहुतो एना रोड ब्रेकर अछि जकर कोनो मापदंड नहि अछि, जाहि कारण वाहन चालक सबके परेशानी बढ़ल जा रहल छनि। दरभंगा बस टर्मिनल के होयत आधुनिकरण। एहि बाट लेल जे बाधा छल से दूर भेल। दिल्ली मोड़ बस फलाव के अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल बनेबाक हेतु जमीन के समस्या जे छल ओ दूर भऽ गेल। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार यशवाल कहलनि जे 8.67 एकड़ भूमि के सैयद सूची देबाक आधिकारिक स्वीकृति दऽ देलनि। आब बस स्टैंड बहुयामी बनत जे विभिन्न सुविधा सँ उपयुक्त होयत। आधुनिक प्रतीक्षालय विश्रामालय सुगम आवागमन के व्यवस्था स्वच्छ वातावरण आदि आदि आमजन के यात्रीगण सबके सुविधा एहि पड़ाव में भेटत। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय विद्युत परिषद की बैठक भेल। सत्र 2026-27 सौ आरंभ हुए।

0: 60 नव रोजगार परक कोर्स, 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम CBCS के अनुसार मैथिली और मनोविज्ञान विषय के संशोधित पाठ्यक्रम विद्वत परिषद अपन सहमति सब पास के लाइन। सेमेस्टर 3-8 तक MIC के संशोधित पाठ्यक्रम होयत मैथिली और मनोविज्ञान विषय में। विश्व साइकिल दिवस पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में साइकिल जागरूकता रैली निकालल गेल। प्रतिभागी जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत से जुड़ल नारा लगेलन और साइकिल सेहो चलेलन। विश्व पर्यावरण दिवस पर बागमती के धार पर चलल स्वच्छता अभियान, युवागण केलन श्रमदान, कहलन जे पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयास से संभव नहीं अपितु आम जन खासकर युवा वर्ग सबके एहि लेल आगू आव पड़त। आगामी मुहर्रम के लक दरभंगा जिला किसान समिति के बैठकी भेल, जेमे विभिन्न तरहक निर्देश DM द्वारा देल गेल। कहल गेल जे मुहर्रम बहुत संवेदनशील अछि, एहि दुआरे विधि व्यवस्था एकने सँ चुस्त दुरुस्त राखऽ चाही। एहि संग हालचाल सम्पन्न भेल, नमस्कार।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हालचाल के बाद प्रस्तुत है, श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर हैं 6202-7740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर हैं 7763-818-777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरभंगा से ट्रेनों की बात करें तो सुबह 6:30 पर पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति, दोपहर 12:33 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7 बजे दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3 बजे दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: और किस मौसम संबंधी जानकारी दो दी, आजुक उच्चतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहत और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकित अछि। संगे संगे तेज पछवा बसात चलो के संभावना अछि। और KM जी
4: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल, और श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना। लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं आत्मनिर्भर हम कैसे बने इस पर। तो जाहिर है किसी भी काम को हम करते हैं अगर, तो उस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर आदमी किसी न किसी चीज़ पर निर्भर होता ज़रूर है, लेकिन कोशिश ये करने की होती है कि हम इन चीज़ों पे से थोड़ा सा दूर रखकर खुद पे विश्वास रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हुए हर काम को खुद पे करें, दूसरों पर निर्भर न रहते हुए हम अपने आप को संभालें, अपने व्यक्तित्व को, विकास को आगे बढ़ावें, अपने स्किल्स विकसित करें, ताकि आपका जो वो चीज़ का मांग है वो खुद में हो सके, अपनी आय का साधन बने, अपनी आय को व्यय सही हिसाब से रखें, पैसे बचाएं और समझदारी से निवेश करें, अपनी छोटी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान खुद खोजें, खुद पे भरोसा रखें, आप सही निर्णय ले सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को कहने की आदत छोड़कर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में बने उत्पादकों का प्राथमिकता दें, उसके जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उसको हम ज़्यादा खरीद बिक्री करें तो अच्छा है, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आदतें और दिन

0: दिनचर्या को सही करने की ज़रूरत है। अपनी आत्मनिर्भरता को एक मांसपेशिया की तरह समझें और कार्यशील बने बनाए रखें। आपको इसका लगातार उपयोग करते रहना होगा। आत्मचिंतन से अभ्यास होता है किसी चीज़ के लिए, और ये ज़रूरी है कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बने।
1: बहुत नीक हम जी अपने एक एक टा जे गप कहलों से अकाट्य सत्य है। जीवन में कखनो हमरा सब के अपन आत्मबल के कमजोर नहीं करब चाहिए। ए उदाहरण एक टा देवे कन हम एखन बिहार भरी में जीविका दीदी के नाम अहाँ प्राय सुनते रहे छी, कतौ ने कतौ हुनकर कार्यक्रम या हुनकर उत्पाद आगा आबि कऽ से समाज में जे महिला वर्ग छथि खासकर हुनका लेल एकटा वरदान साबित भऽ रहल अछि। किएक जीविका दीदी केलखिन की, आखिर केलखिन की, केलखिन इएह मात्रता जे अहाँके अंदर जे छुपल प्रतिभा छल, गुण छल महिला सबमे, ओकरा ओ आगाँ बढ़ेलखिन। ओहिमे शिक्षा कोनो अवरुद्ध नहि भेलै। शिक्षित छथि या निरक्षरो छथि कोनो बात नहि, ओ नहि पढ़ली कोनो बात नहि, अक्षर मात्र हस्ताक्षर करै छै कोनो बात नहि छै, हुनकोमे गुण छनि। ओहि गुणके जीविका दीदी सब ऊपर अनलखिन और हुनका किछु प्रोत्साहन राशि दऽ कऽ छोट छोट लघु उद्योग कुटीर उद्योग सब बढ़ावा देलखिन। अहाँ जे कहलहुँ हैं जे अपन उत्पाद, एहिसँ की हैत, अपन ओहिठामके यदि उत्पाद हमसब खरीदै छी तऽ ओ धन कतऽ जेतै? ओ धन जेतै अहीँके माँ बहिन या हमर माँ बहिन जे जीविका समूहमे छथि या अन्य नहिओ समूहमे छथि, छोट छोट लघु कुटीर उद्योग करै छथि, अपन आजीविका चलबै छथि, दोसरोके रोजगार दै छथिन। तऽ ई कखन हो भऽ सकै छै? ई तखने भऽ सकै छै जखन कि आत्मबल सबके मजबूत होइ। आत्मबल मजबूत भेलासँ की हेतै? लोक आगाँ की समस्या होइ ओकरे बारेमे नहि सोचै, समाधानेपर पहुँचैत अछि। समस्या तऽ अबिते छै। अहाँ कोनो काज करू, जीवनमे कोनो काज करू, हमसब चलै छी बचपनमे, हमसब अ आ कए बेर स्लेटपर लिखै छलहुँ हँ आओर फेर ओकरा मिटा दै छलियै जे गलत भऽ गेल। तऽ केना भेलै? धीरे धीरे अभ्यास केलहुँ, आत्मबलके मजबूत केलहुँ, परीक्षापर परीक्षा देलहुँ, तखन हम पास करैत गेलहुँ, आगाँ बढ़लहुँ। ओहिना सब काजमे ई बात महत्व रखै छै जे अहाँ अपन आत्मबलके मजबूत राखू। समस्या तऽ अयबे करत, जीवनके ई नियम छै जे समस्या अयबे करतै। जेना नदीके धारा पानि जे होइए से दुनू किनारसँ टकरा कऽ जाइ छै, ओहिना समस्या यदि अहाँ कोनो काज करबै तऽ ओहिमे अयबे करत। ई जे चाहबै जे बिना समस्याके हमरा सब किछु भेट जाए से नहि सम्भव छै जीवनमे। यदि लक्ष्य साधऽके होइ छै तऽ समस्या अबिते छै, आओर समस्याके जे पार करैए वएह आत्मबलसँ मजबूत होइए आओर ओकरे जीवनमे सफलतो भेटै छै। तैँ विचारणीय प्रश्न एहिठाम ई अछि जे आत्मबलके मजबूत केना करी, कोन एहन तरीका हेबाक चाही जाहिसँ सबके अपन अपन आत्मबल मजबूर होइ, कतौ कतौ मजबूत होइ। क्षमा करब, कतौ कतौ देखल गेलै जे आत्मबल कमजोर भेलासँ बहुतो नुकसान आदमी कऽ बैठैए आओर अवसादमे सेहो चलि जाइत अछि। अवसादमे वएह जाइत अछि जकर आत्मबल कमजोर होइ छै। तैँ आत्मबल बनेबाक लेल से अपन सबसँ पहिले जे कर्मना अछि, कर्म अछि, ओहिके प्रधानता दी, समन्वय बनाबी परिवारमे समाजमे, सबके सङ्ग लऽ कऽ चली। ठीक छै अहाँ आर्थिक रूपसँ बहुत सम्पन्न नहि छी, कोनो बात नहि छै, अहाँमे जे सामाजिकता रहत, अहाँमे जे परिचय रहत तऽ अहाँके दोसर मदद करत, अहाँ ओहिसँ आत्मबल मजबूत कऽ सकै छी। सरकारो आइ छोट छोट लघु उद्योगके लेल से छोट छोट धन दऽ रहल छै, किएक तऽ हुनकर आत्मबल मजबूत होइन, ओ आगाँ आबथि आओर देशके विकासमे ओ एकटा अपन भूमिका निभाबथि। अहिना देशके हर नागरिकके ई कर्तव्य होइ छनि जे अपन आत्मबलके कखनो कमजोर नहि हुअ दू। आइकाल्हि देखल गेल अछि जे एकटा मजदूरो वर्ग अइ जे श्रमदान करैत अइ, श्रमसँ उपार्जन करैए, ओकरोसँ गपशप करै छी तऽ ओहोसब आत्मबलसँ मजदूर मजबूत होइए। कहैत एके बात जे हम श्रम करब तऽ हमरा एतेक पारिश्रमिक भेटत, ओहिसँ हम ईसब काज करब।
0: जी बिल्कुल, और किसी भी काम को अगर हम करते हैं तो एक विश्वास के साथ करते रहना चाहिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, और कभी किसी भी काम के लिए सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे दे रखे हैं, उसके लिए सहयोग किया है, ख़ासतौर पे ग्रामीण इलाकों में भी, जैसा कि अभी बात किया प्रवीण जी ने कि जीविका दीदी ने के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक

पहुंचाया गया है। तो किसी भी काम को, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो एक विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी जॉब को, किसी भी काम को करने वाले कोई भी इंसान हो, हम इंसानों के अंदर में बहुत ज़रूरी है कि हमारा आत्मनिर्भरता होना ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि हम किसी काम को कर रहे हैं अगर, तो इसमें हम जिन चीज़ों को करते हैं उन चीज़ों में हो सकता है कि सफलता एक बार में नहीं मिले, बार बार उसमें हमें फेल होने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हिम्मत को टूटने नहीं देना होता है, अपने हौसलों को आगे रखने की ज़रूरत होती है ताकि एक दिन आप ज़रूर सफल होते हैं। ये ज़रूरी है आपको देखकर दूसरे लोग भी अपने अंदर वो सारी चीज़ों को अपनाने की, वो सारी गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बने, अपने कामों के प्रति जागरूक रहें, अपने कामों के प्रति सच्चे लगन के साथ हम अपने काम को करें, सच्ची निष्ठा के साथ काम करें। काम कोई सा भी हो, आप ये कोशिश कर लें कि इस काम में ज़िंदगी का बेस्ट, जीवन का बेस्ट से बेस्ट देने की हम कोशिश करें, तब उस काम में हम सफल हो पाते हैं। और हम भी आकाशवाणी के स्टूडियो से कोशिश करते हैं कि हम अपने श्रोताओं को अच्छा से अच्छा

एक बार में नहीं मिले, बार बार उसमें हमें फेल होने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हिम्मत को टूटने नहीं देना होता है, अपने हौसलों को आगे रखने की ज़रूरत होती है, ताकि एक दिन आप ज़रूर सफल होते हैं। ये ज़रूरी है आपको देखकर दूसरे लोग भी अपने अंदर वो सारी चीज़ों को अपनाने की, वो सारी गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बने, अपने कामों के प्रति जागरूक रहें, अपने कामों के प्रति सच्चे लगन के साथ हम अपने काम को करें, सच्ची निष्ठा के साथ काम करें। काम कोई सा भी हो, आप ये कोशिश कर लें कि इस काम में ज़िंदगी का बेस्ट, जीवन का बेस्ट से बेस्ट देने की हम कोशिश करें, तब उस काम में हम सफल हो पाते हैं। और हम भी आकाशवाणी के स्टूडियो से कोशिश करते हैं कि हम अपने श्रोताओं को अच्छा से अच्छा कार्यक्रम उनके रेडियो तक पहुंचा सके। और अब देर ना करते हुए श्रोताओं के रेडियो पर भेजते हैं एक प्यारा सा गाना।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, और हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मनिर्भर हम कैसे बने, और आत्मनिर्भरता के साथ साथ हम इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और इस ज़माने में हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आदत सी पड़ गई है हमें, और उसमें सोशल मीडिया एक सबसे मुख्य कारण है, जिसकी वजह से आज ऐसा लगता है आज के यूथ को, आज के समाज के हर लोगों को इसकी एक आदत सी पड़ गई है, एक हमारे जीवन का एक अंग हो गया है, एक एक फितरत, जिसकी वजह से शायद हम ऐसा लगता है कि 2 मिनट में अगर हमारे पास ये नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, जिसका जीता जागता उदाहरण मोबाइल है, मोबाइल नहीं हो तो मोबाइल नेट नहीं काम कर रहा है तो लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है जिस तरह आजकल गर्मी से हम परेशान रहते हैं उस तरह वो आदत सोशल मीडिया की हमें हो गई है कि हम इस बात को देखते हैं या हमारे जीवन के विभिन्न अंग का एक पार्ट सा बन गया है। आज समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। यह दूर बैठे लोगों को, परिवार और दोस्तों को एक दूसरे के करीब लाता है। इसके माध्यम से वैश्विक स्तर पर विचारों और सूचनाओं को अत्यंत प्रदान आसान हो गया है। छोटे व्यवसायी क्रिएटर्स के लिए सोशल मीडिया की मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सबसे सस्ता और प्रभावी माध्यम है। इसके जरिए सामाजिक मुद्दे पर जागरूकता फैलाना और जन आंदोलन खड़ा करना आसान हो गया है। और श्रोताओं, ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी चीज़ के लिए हम जितना लाभ होता है, किसी भी चीज़ पे हमें जितना लाभ होता है उतना उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सोशल मीडिया साथ ही ऐसा ही है कि इसके अत्यधिक उपयोग से युवाओं में तनाव, असमता और फोमिंग जैसी कुछ घटनाएं हो गई है। डर जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहों और फर्जी खबरें बहुत तेज़ी से फैल रही है। इसकी लत के कारण उत्पादकता घटती है और वास्तविक दुनिया में लोगों के बीच में संवाद कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया एक शक्तिशाली उपकरण है। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। संतुलित और जागरूक तरीके से इसका उपयोग करने पर यह अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। सोशल मीडिया एक बहुत ही आज के ज़माने में हमने पहले भी कहा कि बहुत ही ज़रूरी है, एक आदत, एक फितरत सी बन गई है हमारी, इसके बिना ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।
1: सत्य कहै छी अहाँ कहे हम जी आधुनिक युग अछि, एकरा हम सब स्मार्ट युग सेहो कहै छिए, स्मार्ट दुनिया, स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्ट लैपटॉप, आब तऽ छोट छोट यंत्र सब आबि गेलै एहन एहन जे देखियो गुण आ अवगुण शरीरों में छे, हर जीव में छे, ओहिना विज्ञानों में गुण छे, लेकिन

बच्चा के हाथ में दै छिए, किशोर के हाथ में दै छिए, तो इहो जरूरी है ये केहनो तरह काज रहे निरीक्षण, बच्चे के ध्यान, बच्चे के ऊपर बच्चा की कर रहल है, ओ मोबाइल में केहन उपयोग कर रहल है, कि बच्चा लगातार खाली गेमे खेल रहल छे, कि जने छिए ओकर आँखो के ओ खराब कर सके छे। और बहुत बच्चा के आँख प्रभावित भ रहल छे, बहुत बच्चा के खेलैत खेलैत माथा शून्य सेहो भ जाइ छे, बहुत बच्चा गेम में कहलो, बहुत बच्चा एहन स्थिति भ गेलै है जे ने उगल पाबै छे ने निगल पाबै छे, यानी ओ एते खैर गेल छे जे ने ओ गार्जियन या अभिभावक से टकरा ने माता ने पिता के अंत में की होइ छे, बच्चा ओ माने एक तरह से एबनॉर्मल भ जाइ छे, विकृत भ जाइ छे बच्चा, ओकर हाव भाव जो हुआ लगे से अभिभावक के मने ई बुझाइते नहीं छन बच्चा में किया भेले। आ कोनो कोनो बच्चा तो से नहीं कहब चर्चा नहीं करब, आत्महत्या तक के निर्णय लो, तही जरूरी सब किछ छे जीवन में। और आधुनिक युग में सोशल मीडिया हो जरूरी छे, लेकिन ओकर उपयोग आ उपभोग केना करी ते पर निर्भर छे। कार्यक्रम में आगू गप करब, आप सुनै छी एकटा सुंदर संग फिल्म संगीत।

0: उम्मीद करते हैं श्रोताओं को ये गाना बिल्कुल पसंद आया होगा। घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि वक्त हो चुका है इजाज़त लेने का, लेकिन चलते चलते श्रोताओं को रूबरू करा दें, थोड़ा अपडेट कर दें समसामयिक घटना पर एक नज़र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपये के विमानन ईंधन स्थिरता कोष की को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में त्रिव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत में आवागमन वाहन परितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल जाएंगे, रुकी हुई रेल परियोजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत।
1: कैयाम जी, आओ कार्यक्रम के समय समापन के तरफ अछि और हम सब सब दिन अहाँ सबके एकटा बात कहै छी जे आब रेडियो कोनो जरूरी नहि छै सेटे पर अहाँ सुनी। आब रेडियो हर घर में मोबाइल में आबि सकैत अछि, ओहि के लेल अहाँ से मोबाइल में ओ ऐप से लोड कऽ लेब और अहाँ रेडियो सुनब। रेडियो एहन साथी होइए जे अपन काजो करब और संगे संगे रेडियो सुनब। ओहि के लेल
0: बिल्कुल आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो मोबाइल फ़ोन एक रेडियो का भी काम करेगा। रेडियो को साथ लेकर जाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके हाथ में आपके पॉकेट में भी रेडियो है। उसके लिए तरीका यह है कि आप प्ले स्टोर में जाएं, अपने एंड्रॉयड सेट के प्ले स्टोर में जाएं जहां न्यूज़ ऑन AIR डाउनलोड करें और आकाशवाणी दरभंगा के सारे कार्यक्रमों को आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम को आप अपना फेवरेट बना सकते हैं। खुद का ख्याल रखते हुए खुद का ख्याल रखिए, परिवार के लोगों का ख्याल रखिए। इस लू में गर्मी में घर से बेगैर ज़रूरी आप नहीं निकलें। ये कोशिश करें कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम हो दोपहर के समय में हम निकलने की कोशिश करें, पानी पीते रहें और अपने आप को बचाते हुए हम भी कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात हो।
1: ऐसा हमारा सबके दिया आज्ञा। हम प्रवीण
0: और कयाम नैयर,
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
5: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
6: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
7: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
8: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
9: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
10: जनकपुर जाने के लिए आए,
9: कभी खरीदारी भी करते हैं।
11: हिंदी वाला सामान किनना है।
9: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
12: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
9: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
13: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
9: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं।

0: प्रत्येक
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार

0: बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेज अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगा सन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को एक गोल से हराकर भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है।

0: बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को एक गोल से हराकर भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रॉड्रिगेज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफ्द भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रॉड्रिगेज इससे पहले साल 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस बातचीत में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू ज़ेर गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्ज़ान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेनेजुएला का वफद भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियत से वाकफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने की खातिर तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मकामात का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत इदारों ने तवानाई के शोबे में वेनेजुएला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मीद है कि वेनेजुएला के लीडर के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में राबतों को तकवियत भी मिलेगी। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खित्ते के फरोग से मुतालिक वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए तश्कील दी गई आला सतह की सीएम टास्क फोर्सेज की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के दौरान सियाहत, ज़िराअत, बागबानी, सरमायाकारी के फरोग, दूध, अंडों, मछली और गोश्त में खुद किफालत, खेलों के फरोग, इक्तिसादी कॉरिडोर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और हथकरघा और दस्तकारी के बारे में प्रेजेंटेशन पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि इस तबादला ख्याल से मुश्तरक मकासद के हुसूल के लिए रियासतों और मुतल्लिका फरीकों के माबैन तालमेल के साथ इकदाम करने में सहूलत होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह पुष्पा बांता पैलेस होटल का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंकामूरा के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ की सरहदी चौकी पर वो जाएंगे और रियासती नीज मरकजी सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ आला सतह की मीटिंग करेंगे। रियासती सरकार ने जनाब अमित शाह के दौरे के सिलसिले में आला सतह की इंतजामी और सिक्योरिटी मीटिंग का भी एहतमाम किया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों से कहा है कि अमरीका और भारत अपने उस तजारती समझौते को हतमी शक्ल देने से महज कुछ हफ्ते दूर हैं जिसका तवील अरसे से इंतजार था। खारजी उमूर से मुतालिक हाउस कमेटी के सवालों के जवाब देते हुए कल रात जनाब रूबियो ने बताया कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली समझौते को मुकम्मल करने के करीब हैं। जनाब रूबियो ने इस बात को कई बार उजागर किया कि भारत बहरुल काहल खित्ते में भारत अहम स्ट्रेटेजिक शराकत दार है। उनका यह बयान दुनिया की 2 सबसे बड़ी और सबसे कदीम जमहूरियत के दरमियान माशी ताल्लुकात की बढ़ती रफ्तार की जानिब इशारा करता है। जनाब रूबियो ने मजीद कहा कि उनके भारत दौरे के दौरान क्वाड के उनके हम मनसबों से भी तबादला ख्याल हुआ। क्वाड ग्रुप में भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावान फोम्बी फाने के साथ कल नई दिल्ली में 10वीं भारत लाओ पीडीआर मुश्तरक कमीशन मीटिंग की मुश्तरक सदारत की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने खित्ते में भारत आसियान ताउन और पेशरफ्त को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। अपनी इफ्तिताही तकरीर में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और लाओ पीडीआर के दरमियान करीबी सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्धिज्म और रामायण के मुश्तरक विरसे में नजर आते हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि

0: पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दा और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इस पांच रोजा चैंपियनशिप में अमरीका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 जुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुवत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज लगी जबरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जाँच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिशजदगी वाकई की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेजबान भारत गोवा के मारगाओ में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इकतदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है, जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमाजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमाजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खाजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
4: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
5: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क

0: विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करेगी, कैबिनेट की बैठक में हुआ निर्णय। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करेगी। इसके तहत बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली के द्वारा जिला ई गवर्नेंस पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि आम लोगों को डिजिटल सेवाओं से जुड़ने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी।
1: सूचना प्रावैधिकी विभाग का एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
0: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि आय सीमा बढ़ने से अधिक मरीजों को योजना का लाभ मिलेगा।
1: स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई।
0: राज्य मंत्रिमंडल ने बक्सर के नबीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पेय पदार्थ उत्पादन इकाई को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति भी दी है। एक अन्य फैसले में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित दादर मौजा की 7 एकड़ अर्जित जमीन पर डेयरी और दुग्ध उत्पादन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने कुल 13 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

0: केंद्र सरकार ने बिहार में एनएच 31 और एनएच 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को फोर लेन में उन्नयन की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत 144 किलोमीटर लंबी सड़क का अपग्रेडेशन किया जाएगा। इस पर 3,936 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पूर्णिया शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा।
1: खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। इस सेक्शन की लेंथ है 144 किलोमीटर और कॉस्ट आएगी 3,936 करोड़ रुपए। फोर लेनिंग होगी और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर के तरीके से इसको डेवलप किया जाएगा। एग्जिस्टिंग टू लेन रोड है जिसको कि अपग्रेड किया जाएगा फोर लेनिंग से। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है ये और आगे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी इसी से जुड़ती है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की प्रस्तावित नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत शिक्षकों के साथ ही प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला इस महीने शुरू होगा। इसके लिए समानुपतिकरण का कार्य 10 जून तक पूरा हो जाएगा।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है विभाग, उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए महिलाओं का ट्रांसफर, पुरुषों का ट्रांसफर, और इसको लेकर के हमारी नीति अगले 10 दिन में हम पूरा करेंगे और जून महीने में ट्रांसफर से जुड़े हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। जब हमारे विद्यालय खुलेंगे तो हमारे सभी शिक्षक जिनको ट्रांसफर को लेकर समस्या रहती थी, वो अपने जिस विद्यालय को उन्होंने ऑप्शन दिया होगा उस विद्यालय में वो नजर आए।
0: एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही नया कोचिंग कानून लागू होगा। नए कानून के लागू होने के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग कानून के लिए बिहार कोचिंग संस्थान विधेयक 2026 लाया जाएगा।
2: एक नीति भी बनाएंगे आने वाले दिनों में। ये कोचिंग संस्थान अगर आपस में प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के साथ इस प्रकार की स्थिति करेंगे और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसको रोकने के लिए एक नीति भी बनाएंगे। कोचिंग संचालकों के लिए एक नीति बना करके और उस नीति के अंदर में इनको बैन करें।
0: उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और होटलों के निर्माण के लिए 31 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की गई है। पटना में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की बैठक में उद्योग मंत्री ने कहा कि 16 औद्योगिक इकाइयों के लिए 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बिहार में 992,63,00,000 रुपए के निवेश का अनुमान है। श्री सिंह ने कहा कि औद्योगिक इकाई के लिए पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में भूमि आवंटित की गई है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में आगलगी की घटना में 21 लोगों की मौत के बाद बिहार पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने पटना और नालंदा के सभी होटल और गेस्ट हाउसों की जांच के निर्देश दिए हैं। 3 चरणों में इन जिलों के होटल और गेस्ट हाउस की जांच 15 जुलाई तक पूरी करने का आदेश दिया गया है। पहले चरण में 15 जून तक इन जिलों के सभी थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र के होटलों की सूची बनाकर पुलिस उपाधीक्षक को सौंपनी होगी। वहीं दूसरा चरण 15 जून से 30 जून के बीच चलेगा, जबकि तीसरा चरण 15 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। अनुसंधान अपराध विभाग सीआईडी ने गोपालगंज में जदयू विधायक आनंद सिंह और अमरेंद्र कुमार पांडे के खिलाफ दर्ज अलग अलग कांडों की जांच शुरू कर दी है। दोनों विधायकों पर आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 2 पदाधिकारियों के नेतृत्व में अनुसंधान किया जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के मीरगंज थाने में एक कार्यक्रम के दौरान मोकामा के विधायक आनंद सिंह की मौजूदगी में समर्थकों द्वारा हथियार लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं कुचायकोट थाने में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला दर्ज है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक।

0: पर हमारे स्टेशन लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के ICU में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आ रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्र ने कहा कि इस मामले में लापरवाही के दोषी सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। तो कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गयाजी सहित राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है।
3: अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है।
1: पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं कैमूर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस, वाल्मीकिनगर का 40.2 और पटना का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर विभाग ने सीमांचल और कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों में आज आंधी बारिश की आशंका भी जताई है। भागलपुर स्थित विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर निर्मित बिली ब्रिज पर 7 जून से यातायात सेवा शुरू हो जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि पुल पर वाहन परिचालन का ट्रायल सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अप्रोच रैंप का निर्माण कार्य भी अगले 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। श्री पाल ने कहा कि परीक्षण के दौरान 2.5 टन वजन वाले 4-पहिया वाहन को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाकर पुल की मजबूती और सुरक्षा का आकलन किया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के अनुसार परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और पुल पर यातायात संचालन के लिए आवश्यक मानकों की पुष्टि हो गई है। इसके बाद 7 जून से वाहनों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बेली ब्रिज के चालू होने से भागलपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। कटिहार रेल मंडल में चल रहे दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रेलवे ने 12 जून को सहरसा सियालदा हाटे बाजार एक्सप्रेस के परिचालन मार्ग में बदलाव किया है। इस दिन ये ट्रेन पूर्णिया बनमंखी मधेपुरा मार्ग की जगह मानसी नौगछिया कटिहार के रास्ते संचालित होगी। मालदा रेलमंडल के ADRM AK मौर्या ने जमालपुर का दौरा कर विभिन्न रेल परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। ADRM ने डीजल शेड के पास निर्माणाधीन नई पिट लाइन, एग्जामिनेशन लाइन, सर्विस बिल्डिंग समेत अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा पेंशन योजना की समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में DDC डॉक्टर प्रदीप कुमार ने HIV/AIDS से बचाव के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। जिले में 17 अगस्त तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर एड्स, सिफिलिस और अन्य बीमारियों की जांच निःशुल्क की जाएगी। पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह, बगहा के पुलिस अधीक्षक, SSB कमांडेंट और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जमीन विवाद को लेकर स्थल निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र में किसी विवाद और संवेदनशील गतिविधियों पर निगरानी रखने

0: के निर्देश दिए हैं। सारण जिले के रिविलगंज प्रखंड में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान चलाया गया। छपरा स्थित सदर अस्पताल की मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि कुमारी ने लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। राजस्थान में कल से आयोजित होने वाली 36वीं जूनियर राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। पटना में आयोजित ऑल इंडिया महिला टेनिस टूर्नामेंट में पटना की भार्गवी शर्मा ने उत्तर प्रदेश की इराम जैदी को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भार्गवी का सामना तमिलनाडु की सिलेश्वरी से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, राज्य मंत्रिमंडल का फैसला, मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से अब 4 लाख रुपए तक आय वालों को भी सहायता। दैनिक जागरण लिखता है, स्कूली बस में अनिवार्य रूप से लगाना होगा सीसीटीवी, जीपीएस और पैनिक बटन। प्रभात खबर ने सरकारी टेंडर में हेराफेरी से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, ऋषु श्री के ठेके में क्यों बनाए पेटी कॉन्ट्रैक्टर। अखबार लिखता है, होगी जांच। दैनिक भास्कर ने आरबीआई के हवाले से लिखा है, सोना बेचने की खबर भ्रामक, 1 साल में भंडार बढ़ा। आज अखबार का शीर्षक है, बिहार में क्यूआर कोड यूपीआई से जमा होगा ई चालान। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर आईटी सेंटर स्थापित करने का फैसला किया। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की नीति 10 दिनों में तैयार हो जाएगी। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज सुबह अगलगी की घटना में 3 मरीजों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और गया समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
2: शुभवाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: एक्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: हम एक हैं, भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
4: जनकपुर जाने के लिए आए,
3: कभी खरीदारी भी करते हैं।
5: हिंदी वाला सामान किनना,
3: सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
4: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
3: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
6: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
3: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझ के सुपारी बुझ के आनि के देता।
2: अपन परंपरा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार। नब्बे वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
3: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
4: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
3: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
4: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR

शायर में बदुज़्ज़मां से उनके खूबसूरत कलाम समाप्त करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में चंद गज़लों का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं पंकज उदास और अनुराधा पौरवाल की इस खूबसूरत गज़ल से।

0: सामाईन, अभी आप पंकज उदास और अनुराधा परवाल की आवाज में सुन रहे थे ये प्यारी सी गजल। आज 4 जून है, आज जारहियत के शिकार बच्चों का आलमी दिन है। आज का दिन जारहियत के शिकार बच्चों के लिए मखसूस है। 1982 में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की पहल से इसे शुरू किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद दुनिया भर में जंग में और जंग और तशद्दुद से मुतासिर बच्चों को, मासूम बच्चों की जो तकलीफ़ है उसको उजागर करना है, इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। मौजूदा दौर में दुनिया के कई ममालिक जंग जदल की लपेट में हैं। इन इलाक़ों में रहने वाले करोड़ों बच्चे बराह रास्त जंग, बीमारी और तशद्दुद की जद में हैं और रोज़ाना तशद्दुद और मौत का सामना कर रहे हैं। अपने प्यारों की जुदाई और खौफ ने इनके ज़हनी नशोनुमा को रोक दी है। ऐसे बच्चों को खुराक, सेहत, तालीम और शफाफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियतें भी मुयसर नहीं होती हैं। बम धमाकों और गोलीबारी में हज़ारों बच्चों या तो अपनी जान गंवा बैठते हैं या हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं। तशद्दुद और गुर्बत के शिकार बच्चों को मशक्क़त कराई जाती है और इन्हें जराइम की दुनिया में धकेल दिया जाता है। इसलिए ये ख्याल रहे कि जारियत के शिकार बच्चे का आलमी दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने या मनाने का एक नहीं बल्कि ये सब हम लोगों को याद दहानी का दिन है। इससे हमारे लिए ये एक याद दहानी होती है कि हम इन बच्चों के लिए आवाज़ बने। बैनुल अख्वामी इदारों को जंग इलाकों में बच्चों की जो हिफाजत और बहाली के लिए ठोस इकदाम उठाने चाहिए ताकि वो पूरा अमन और महफूज माहौल में परवरिश पा सकें। और ये हम सब की जिम्मेदारी भी है कि हम इन सब पर तवज्जो दें, इन सब पर ध्यान दें। तो ये थी आज की बात। चलिए अब चलते हैं अब अगले प्रोग्राम की जानिब और सुनते हैं आज का अफसाना। अफसाना का उन्वान है मॉडर्न लड़की और अफसाना निगार हैं शीबा कौसर।
1: आज फिर अदनान की शादी को लेकर घर में खूब हंगामा मचा था। अदनान की अम्मी को अपने भाई की घरेलू लड़की राहिया पसंद थी, मगर अदनान को उसके अब्बू के दोस्त नसीम साहब की लड़की मारिया पसंद थी। आखिर राहिया में ऐसा क्या है जो आप उसे इतना पसंद करती हैं, अदनान ने अपनी अम्मी मासूमा बेगम से पूछा। अदनान बेटे, तुम्हें अभी ज़िंदगी का तजर्बा नहीं है। राहिया में वो सब खूबियाँ हैं जो एक सलीकेमंद अच्छी लड़की में होनी चाहिए। मैं मज़ीद क्या कहूँ, ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती, मासूमा बेगम ने अफसोदगी से कहा। अम्मी जान, मुझे तो मॉडर्न लड़की ही चाहिए, मारिया जैसी। राहिया किसी भी तरह मॉडर्न नहीं है, अदनान ने मुंह बनाकर कहा। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चल पड़ा मारिया के घर की जानिब। मारिया घर में अकेली थी। उसके वालिद साहब नसीम अहमद इंडियन आर्मी में पोस्टेड थे, वो छुट्टियों में ही घर आते थे। मारिया की वालदा को घूमने फिरने और शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मारिया की तरबियत करती। अदनान अली

ने मारिया को फिल्म चलने के लिए कहा। वो फौरन राजी हो गई। वो तैयार होने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। इसी बीच कॉल बेल बजी। अदनान अली ने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान पैकेट लिए खड़ा था। मारिया मैडम घर में हैं क्या? उन्हें बुला दें। उस नौजवान ने पूछा। हाँ बोलिए, क्या काम है? अदनान अली ने कहा, ये पैकेट उनको दे देंगे। उस नौजवान ने कहा। मारिया तैयार होकर आई तो अदनान ने पैकेट बढ़ाया। मारिया ने उस पैकेट को जल्दी से अपने हाथों में ले लिया, जैसे कोई बहुत कीमती शय हो। क्या है इसमें? अदनान अली ने पूछा। वो मेरा कुछ जरूरी सामान है, मारिया ने टालते हुए कहा। वो दोनों फिल्म देखने पहुंचे। जब अंधेरा हो गया और फिल्म शुरू हो गई तो मारिया ने उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। ये क्या कर रही हो? लोग देख लेंगे, अदनान अली ने कहा। तुम्हारी सोच बहुत दकियानुसी है, मारिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिल्म खत्म होते ही दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। अचानक से बीच रास्ते में अदनान की मोटरसाइकिल खराब हो गई। रात के 11 बज रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घर से बार बार कॉल आ रही थी, कहाँ हो तुम? अब तक तुम घर क्यों नहीं आए? फौरन घर पहुँचो, ये अम्मी का हुक्म था। मारिया ने आती जाती गाड़ियों को लिफ्ट लेने के लिए रोकना चाहा, पर नाकाम रही। कुछ देर बाद एक जीप रुकी और पुलिस की वर्दी में एक नौजवान उतरा। उसने पूछा, क्या बात है? हमारी बाइक खराब हो गई है सर, प्लीज हमारी हेल्प करें, मारिया ने कहा। जीप की हेडलाइट की रोशनी में अदनान ने जब उस पुलिस वाले का चेहरा देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे सामीर तुम? अरे अदनान तुम? वो भी इतनी रात में? सब खैरियत? हाँ यार सब खैरियत। देखना यार, अचानक से मेरी बाइक खराब हो गई है, मुझे लिफ्ट चाहिए। दरअसल सामीर और अदनान दोनों साथ साथ पढ़े थे। सामीर की नौकरी पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर हो गई थी। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई है। सामीर ने उनको मारिया के घर तक छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद अदनान को अपने काम के सिलसिले में पटना जाना पड़ा, जहां राहिया रहती थी। बेटा कहीं और ठहरने की जरूरत नहीं, भाईजान के यहाँ ठहर जाना, मासूमा बेगम ने अदनान से कहा। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी, अदनान ने इस बात में सरखम किया। अदनान राहिया के यहाँ पहुँचा तो वो लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। मामानी जान ने उसके लिए ऊपर एक कमरा सेट कर दिया, मगर राहिया उसके सामने नहीं आई। दूसरे दिन अपने काम के सिलसिले में अदनान कहीं निकल गया। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और वो थोड़ा भीग गया, जिसके बाद उसे सर्दी लग गई। देर रात उसकी नींद खुली तो उसे तेज बुखार था। दरवाजा खोलकर वो नीचे आया। उसने सोचा कि किचन में जाकर पानी पी ले, वहाँ हल्की रोशनी थी। उसने देखा कि कोई लड़की किचन साफ कर रही थी। सुनिए, क्या एक कप चाय मिल सकती है? ये कहकर अदनान ने राहिया को देखा तो देखता ही रह गया। राहिया का प्यारा सा चेहरा उसके सामने था। राहिया इतनी खूबसूरत होगी वो सोच भी नहीं सकता था। जी मैं चाय भेजती हूँ, राहिया ने धीरे से कहा। कुछ देर बाद अदनान ने चाय के साथ दवा ली तो उसे कुछ आराम मिला। काम खत्म होने पर अदनान वापस अपने घर लौट आया, लेकिन उसकी नजरों के सामने राहिया का चेहरा था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो किसका इंतखाब करे। एक तरफ राहिया की सादगी सलीकगी और मतानत थी तो दूसरी तरफ मॉडर्न मारिया थी, जिसे वो चाहता था। उस दिन अदनान के घर पर ही था कि अचानक से मोबाइल बज उठी। हेलो कौन? मैं सामिर बोल रहा हूँ, तुम फौरन यहाँ आ जाओ, सामिर ने उसे एक एड्रेस बताया। लेकिन बात क्या है यार? अदनान ने हड़बड़ाकर पूछा। मोबाइल पर? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, सामिर ने कहा। अदनान ने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और सामिर के बताए हुए जगह पर पहुंच गया। वहां पर कई पुलिस वाले खड़े थे। उसने घबराकर पूछा, क्या बात है? अदनान, कुछ लड़के लड़कियां नशीली अद्वियात लेते पकड़े गए हैं, उनमें वो लड़की भी है जो तुम्हारे साथ उस दिन फिल्म देखकर लौट रही थी, इंस्पेक्टर सामिर हसन ने बताया। क्या? अदनान हैरान रह गया। अदनान को तभी वो पैकेट याद आया जो एक नौजवान मारिया को दे गया था। तुम चाहो तो उससे मिल सकते हो, वो लॉकअप में है, सामिर ने कहा। अदनान सामिर के साथ लॉकअप में पहुंचा। उसने देखा कि मारिया दूसरे लड़के लड़कियों के साथ

0: साथ खड़ी है। प्लीज अदनान मुझे यहाँ से निकालो, सामिर तुम्हारा दोस्त है। मारिया ने उसे देखकर कहा, ये सब तुमने क्यों किया बताओ, मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझता था। अदनान ने गुस्से से कहा, मॉडर्न सोसाइटी में तो ये सब चलता ही है अदनान, मेरी बदकिस्मती है कि मैं पकड़ी गई। मारिया ने बगैर किसी शर्मिंदगी से कहा, अगर मॉडर्न होना इसी को कहते हैं तो मुझे तुम जैसी मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए, मेरे लिए तो सीधी सादी राही ही अच्छी है, अदनान ने कहा और वहां से चला गया। मारिया हैरत से उसे जाता हुआ देखती रही।
1: सामईन अभी आप सुन रहे थे अफसाना मॉडर्न लड़की, अफसाना निगार थीं शीबा कौसर। आइए अब बदरुद्दमा से उनके खूबसूरत कलाम समाप्त करते हैं।
2: अपनी चंद ताज़ा गज़लों के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पहली गज़ल के चंद अशार मुलाहज़ा फरमाएं। मतला अर्ज किया है, हर एक चीज़ न क्यों अपनी जा से हट जाए, हर एक चीज़ न क्यों अपनी जा से हट जाए, हर एक चीज़ न क्यों अपनी जा से हट जाए, मगर लबों से तेरे नाम की न रट जाए, मगर लबों से तेरे नाम की न रट जाए। और हुसैन मतलब देखें कि हमारा साया तेरे पास यूं सिमट जाए, हमारा साया तेरे पास यूं सिमट जाए, हमारा साया तेरे पास यूं सिमट जाए, कि जैसे फूल से तितली कोई लिपट जाए, कि जैसे फूल से तितली कोई लिपट जाए। और किसी के चेहरे का सूरज दिखाई दे मुझको, किसी के चेहरे का सूरज दिखाई दे मुझको, घटा जो धुंध की छाई हुई है छट जाए, घटा जो धुंध की छाई हुई है छट जाए। पनाह लेना कहाँ है सितम जदह जाने, पनाह लेना कहाँ है सितम जदह जाने, पनाह लेना कहाँ है सितम जदह जाने, ज़मीन शक हो अगर आसमां भी फट जाए, ज़मीन शक हो अगर आसमां भी फट जाए। लहू भी दौड़ता फिरता मेरी रगों में रहे, लहू भी दौड़ता फिरता मेरी रगों में रहे, कि सांस लेने में ये ज़िंदगी न कट जाए, कि सांस लेने में ये ज़िंदगी न कट जाए। नहीं कबूल सफ़र का मुहासबा मुझको, नहीं कबूल सफ़र का मुहासबा मुझको, नहीं कबूल सफ़र का मुहासबा मुझको, कि संग मील मेरे रास्ते से हट जाए, कि संग मील मेरे रास्ते से हट जाए। और मक्ता अर्ज़ किया है कि नमी का होना ज़रूरी है बद्र आँखों में, नमी का होना ज़रूरी है बद्र आँखों में, मिले न इतनी खुशी रंगे दिल उचट जाए, मिले न इतनी खुशी रंगे दिल उचट जाए। और दूसरी गज़ल के चंद अशआर मुलाहज़ा फरमाएं। मतला अर्ज़ किया है, कुछ नहीं और फ़कत चश्मे इनायत मांगे, कुछ नहीं और फ़कत चश्मे इनायत मांगे, कुछ नहीं और फ़कत चश्मे इनायत मांगे, दिल मोहब्बत तेरी अज़राह मोहब्बत मांगे, दिल मोहब्बत तेरी अज़राह मोहब्बत मांगे। हुस्न मतलब देखें कि जलवाए हुस्न तेरा बज़्म में अदालत मांगे, जलवाए हुस्न तेरा बज़्म में अदालत मांगे, जलवाए हुस्न तेरा बज़्म में अदालत मांगे, शेवाए इश्क मेरा शौक़ वकालत मांगे, शेवाए इश्क मेरा शौक़ वकालत मांगे। और शोख सूरत का नज़ारा किसी सूरत मांगे, शोख सूरत का नज़ारा किसी सूरत मांगे, शोख सूरत का नज़ारा किसी सूरत मांगे, जाने क्यों ऐसा मेरी सादा तबीयत मांगे, जाने क्यों ऐसा मेरी सादा तबीयत मांगे। और अक्ल है कोई शहंशाह हुकूमत मांगे, अक्ल है कोई शहंशाह हुकूमत मांगे, अक्ल है कोई शहंशाह हु

हुकूमत मांगे, दिल तो बस उसकी हुकूमत में वजारत मांगे, दिल तो बस उसकी हुकूमत में वजारत मांगे। रास दुनिया न जिसे आई वो जन्नत मांगे, रास दुनिया न जिसे आई वो जन्नत मांगे, रास दुनिया न जिसे आई वो जन्नत मांगे। ना तमा जैसे कोई जिस्म की ताकत मांगे, ना तमा जैसे कोई जिस्म की ताकत मांगे। रूए मन आई ना खाना से सकूनत मांगे, रूए मन आई ना खाना से सकूनत मांगे, रूए मन आई ना खाना से सकूनत मांगे। आईना है के किसी और की सूरत मांगे, आईना है के किसी और की सूरत मांगे। आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई, आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई, आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई। आदमी है कि वो खुद बारे अमानत मांगे, आदमी है कि वो खुद बारे अमानत।

आईना है कि किसी और की सूरत मांगे, आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई, आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई, आसमां ऐसा कहाँ बोझ उठाए कोई। आदमी है कि वो खुद बारे अमानत मांगे, आदमी है कि वो खुद बारे अमानत मांगे, कुछ नहीं और फ़कत चश्म इनायत मांगे, दिल मोहब्बत यज़राह मोहब्बत मांगे। तीसरी गज़ल के चंद शार भी मुलाहिज़ा फरमाएं। मतला अर्ज़ किया है, चलना कहाँ किसी तरह आसान इलाव पर, चलना कहाँ किसी तरह आसान इलाव पर, चलना कहाँ किसी तरह आसान इलाव पर, मुश्किल नहीं जो ज़िंदगी लग जाए दाव पर, मुश्किल नहीं जो ज़िंदगी लग जाए दाव पर। ऐसा है मुस्कुराना तेरा मेरे दूबदू, ऐसा है मुस्कुराना तेरा मेरे दूबदू, मरहम सब कुछ लगा दे कोई जैसे घाव पर, मरहम सब कुछ लगा दे कोई जैसे घाव पर। शेर देखें कि लगता है तन से रूह की यारी सी हो गई, लगता है तन से रूह की यारी सी हो गई, लगता है तन से रूह की यारी सी हो गई। खुश हूँ मैं एक शख्स से अपने लगाव पर, खुश हूँ मैं एक शख्स से अपने लगाव पर। अब पैहम उसी की समत मुझे देखना पड़ा, पैहम उसी की समत मुझे देखना पड़ा, पैहम उसी की समत मुझे देखना पड़ा। ढीली नज़र हुई न बदन के कसाव पर, ढीली नज़र हुई न बदन के कसाव पर। भर पाने को उसे मैं हुआ फिर पाने को उसे मैं हुआ शाह खर्च यूं, फिर पाने को उसे मैं हुआ शाह खर्च यूं। जैसे लुटाए जर कोई ज़िमनी चुनाव पर, जैसे लुटाए जर कोई ज़िमनी चुनाव पर। पलकों पे ख्वाब बैठे हैं अशकों के आसपास, पलकों पे ख्वाब बैठे हैं अशकों के आसपास, पलकों पे ख्वाब बैठे हैं अशकों के आसपास। रहती है भीड़ प्यासों की जैसे पियाओ पर, रहती है भीड़ प्यासों की जैसे पियाओ पर। कीमत लगाने वालों को लब खोलने दिया, कीमत लगाने वालों को लब खोलने दिया, कीमत लगाने वालों को लब खोलने दिया। यूसुफ क्या एतराज करे अपने भाव पर, यूसुफ क्या एतराज करे अपने भाव पर। चलना कहाँ किसी तरह आसान इलाव पर, मुश्किल नहीं जो ज़िंदगी लग जाए दाव पर। आखिरी गज़ल के चंद अशआर भी मुलाहिज़ा फरमाएं। मतला अर्ज़ किया है, क्या था मैं सिलसिला लड़ाई का, छोटी भरा सहे ममतना के अशआर हैं। क्या था मैं सिलसिला लड़ाई का, क्या था मैं सिलसिला लड़ाई का, भाई दुश्मन अगर हो भाई का, भाई दुश्मन अगर हो भाई का। ऊंची कुटिया न चार पाई का, हुसैन मतला मुलाहिज़ा फरमाया कि ऊंची कुटिया न चार पाई का, ऊंची कुटिया न चार पाई का, मैं तलबगार हूँ चटाई का, मैं तलबगार हूँ चटाई का। हर्फ में मानी के दराने से, हर्फ में मानी के दराने से, हर्फ में मानी के दराने से, उड़ गया रंग रोशनाई का, उड़ गया रंग रोशनाई का। वह महसूर अपनी बाहों में, वह महसूर अपनी बाहों में, ये भी एक रुख है कज अदाई का, ये भी एक रुख है कज अदाई का। रास्ता जो बदल रहा हूँ मैं, रास्ता जो बदल रहा हूँ मैं, रास्ता जो बदल रहा हूँ मैं, पाटना है ये मेरा खाई का, पाटना है ये मेरा खाई का। मैं किसी राज सा हूँ पोशीदा, मैं किसी राज सा हूँ पोशीदा, मैं किसी राज सा हूँ पोशीदा। वो तरफदार खुद नुमाई का, वो तरफदार खुद नुमाई का। मैं वफा की ज़मीन सरता सर, मैं वफा की ज़मीन सरता सर, आसमां है वो बेवफाई का, आसमां है वो बेवफाई का। क्या थमे सिलसिला।

0: लड़ाई का, क्या था मैं सिलसिला लड़ाई का, भाई दुश्मन अगर हो भाई का, भाई दुश्मन अगर हो भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी सामिन, क्या थमे सिलसिला लड़ाई का, भाई दुश्मन हो अगर भाई का। अभी आप बहुत खूबसूरत से ये कलाम सुन रहे थे बदरुज़्ज़मां साहब से। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चंद गज़लों का लुत्फ़ उठाते हैं।

सामाईन, अभी आप गुलजार की लिखी ये गजल सुन रहे थे भूपेंद्र और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। आइए अब अगली गजल सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अभी आप कैसर उल जाफर की लिखी ये गज़ल सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं भूपेंद्र और मिताली की आवाज़ में अगली गज़ल।

सामाईन अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल। इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त अब यहीं खत्म होता है। जर्री फातिमा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

साजन फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

ढाई अक्षर प्रेम के, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और अभिषेक बच्चन की आवाजों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था जतिन ललित ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

अनारी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण के आवाज़ में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने।

पत्थर के फूल। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत के बोल देव कोहली के, संगीत निर्देशन राम लक्ष्मण का। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को हमने लिया था फिल्म निगाहें से। आवाज कविता कृष्णमूर्ति की, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

आशा भोसले और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दोस्ताना में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म नसीब में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: लता मंगेशकर और उदित नारायण को अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, हमारे अगले उद्घोषणा की थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं पहली सभा के कार्यक्रम। पहली सभा के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं उपशास्त्रीय संगीत। आज की कलाकार हैं धोंडू ताई कुलकर्णी, आइए सुनते हैं इनका गायन।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज की कलाकार थी ढोंडूताई कुलकर्णी। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेडके जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम

0: बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से, सूरज चौहान जी का।
0: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोबी का शीत मरुस्थल।
0: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
0: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है, NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।

0: विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
1: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहां यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
1: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है।
1: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
1: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
1: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
1: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओ, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे, मैग्नेटिक हिल?
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ?
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई।

0: होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
6: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
7: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
7: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
6: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
7: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
6: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
7: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
7: और
6: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
7: हाँ, बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
7: बिल्कुल।
6: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
7: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
7: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
6: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
7: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
7: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ।

0: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं।
1: जैसे?
0: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
1: वैदिक समूह?
0: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
1: भरत?
2: भरत नाम तो हमने सुना है।
0: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
1: ओ भरत, अच्छा तो ये बात है।
0: हाँ।
1: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
1: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
1: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
1: है ही नहीं?
0: हाँ।
1: ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने हा का प्रयोग किया।
1: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
1: हिंदू,
0: हिंदू। शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
1: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
2: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
1: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ
2: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ।
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा।
2: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
1: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?

0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं।
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ,
0: हाँ।
2: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा।
2: इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
2: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ।
2: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
2: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
2: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
3: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बना।

0: है माने क्यों जोसेफ?
1: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता
0: ओहो, तुम
1: है?
0: लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
1: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
0: हाँ पूछो बेटा।
1: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
0: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं। लेकिन माँ, ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
1: जी
0: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
1: अच्छा माँ, ये लो माँ।
0: ला। ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
1: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल
0: अरे
1: गया मुझे,
0: क्या
1: अरे
0: मिल
1: मिल
0: गया,
1: गया मुझे माँ, माँ, ओ
0: क्या
1: माँ,
0: मिल
1: माँ,
0: गया,
1: माँ,
0: क्या मिल
1: मैं
0: गया,
1: तो चाहता था, मुझे मिल गया। हाँ
0: और क्या
1: वो
0: मिल गया भाई,
1: जोसेफ,
0: क्या
1: अब तो
0: मिल
1: मैं जा
0: गया?
1: सकता
0: जोसेफ क्या
1: हूँ।
0: हो गया तुम्हें
1: माँ
0: बेटा,
1: माँ
0: बताओ तो
1: माँ
0: सही, क्या हो गया
1: माँ
0: है?
1: माँ, मुझे उड़ने का तरीका मिल गया।
0: हाँ
1: हाँ, उड़ने
0: ओफो,
1: का तरीका मिल गया।
0: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
1: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ
0: हाँ?
1: माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ
0: धुआं?
1: इस कमरे के धुएं को देखो,
0: हाँ?
1: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है?
0: क्या
1: बताओ
0: उड़ रहा है,
1: बताओ,
0: क्या उड़
1: उसमें
0: रहा
1: क्या
0: है?
1: उड़ रहा है?
0: कुछ भी
1: हाँ
0: तो नहीं, कुछ भी तो नहीं है।
1: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है?
0: राख?
1: हाँ हाँ उड़ रही है ना।
0: हाँ वो तो
1: हाँ,
0: है, मगर
1: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है। हाँ,
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
1: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
0: हाँ
1: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा। हाँ
0: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते
1: ठीक
0: हैं।
1: है, आओ
0: अरे
1: मेरे
0: चलो,
1: साथ,
0: अरे
1: आओ
0: सुनो,
1: हम
0: अरे
1: देखते हैं।
0: खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो। ओफ,
2: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
3: अरे अरे
4: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है,
5: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
7: ना जाने क्या करेंगे,
5: रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़ सकती है? अच्छा मजा
7: लगता है, सो गया है।
5: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने
8: दीजिए। भाई साहब हट जाइए।
6: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
5: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
6: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
5: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
6: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
5: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
6: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे

0: कमाल कर दिया बच्चों ने।
1: ये क्या हो रहा है? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
0: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
1: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
1: अरे शाबाश, अरे दो लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
0: वो देखो, वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
1: अरे
0: देखो,
1: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
2: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। दिन के 12 बज चुके हैं, समय है फिल्म संगीत का। आइए आनंद लेते हैं कुछ नई फिल्मों के गाने का।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते

आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुना रहे थे कुछ नए फिल्मी नगमे। नए गानों का आनंद आप फिर से ले पाएंगे संध्या 5:40 से। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी संसार।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार में। बहनों, अभिवादन स्वीकार करें अपनी रेडियो सखी आरती का। सखी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और खुशहाल होंगी, और इस समय आप अपने सारे कामकाज निपटाकर कर रही होंगी इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार का। तो बहनों, अब आपका इंतजार हुआ ख़त्म, मैं आ गई हूँ आपसे ढेर सारी बातें करने और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गाने। साथ ही हर दिन की तरह आप वार्ता भी सुनेंगे, पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। बहनों, प्रत्येक माता पिता का ये दैनिक दायित्व होता है कि वे अपनी प्यारी दुलारी बेटियां को उच्च शिक्षा और दिलाए ताकि वे कोई नौकरी या रोजगार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इससे होता क्या है कि वे आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी और ये भी सिखाए कि वे अपने आप को किसी से हीन ना समझे। सखी बहनों, बदलते समय के साथ आधुनिकता अच्छी बात है, मगर एक दायरे में रहे इसका ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है।

टुडे। हम अपने संस्कार और परंपरा को नहीं भूले। सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी है और छोटी उम्र से ही इसका प्रयास होना चाहिए। हमारे पहनावे से हमारा संस्कार नहीं झलकता, बल्कि हमारा व्यवहार मायने रखता है। इसकी सीख बच्चों को देनी चाहिए। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। बेटियां शिक्षित होगी तभी वे आत्मनिर्भर बनेगी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि बेटियों को पढ़ाना लिखाना उन्हें बेहतर जीवन के लिए कामयाब बनाना किसी निवेश से कम नहीं है। बेटियों को पढ़ाई, उनका अच्छा स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक सुरक्षा हमारे देश की सबसे अच्छी निवेश योजना जैसा है, जिसमें एक बार आप अच्छा निवेश कर दिए हैं तो फिर आपको आजीवन सामाजिक सुरक्षा जैसा एहसास मिलता रहेगा।

बेटियों को पढ़ाई, उनका अच्छा स्वास्थ्य और उनकी सामाजिक सुरक्षा हमारे देश की सबसे अच्छी निवेश योजना जैसा है, जिसमें एक बार आप अच्छा निवेश कर दिए हैं तो फिर आपको आजीवन सामाजिक सुरक्षा जैसा एहसास मिलता रहेगा। शिक्षा जहां बदलते समय की सबसे बड़ी जरूरत है, वहीं वित्तीय स्वतंत्रता भी लड़के और लड़कियों सभी के लिए आज के बदलते युग की अहम जरूरत है। इसलिए मेरा मानना है कि हमें बेटियों को समाज में उभरने के लिए नए मौके देने होंगे। सखी बहनों, एक बेटी दो घरों को रोशनी करती है। अच्छी शिक्षा पाकर जब बेटी अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, तो वे न सिर्फ परिवार बल्कि समाज में भी बेहतर संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाती है, और यहीं से शुरुआत होती है। एक खास बात मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार माँ को अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है और वो किसी हिसाब में नहीं होता है, ऐसे खर्च किसी हिसाब में शामिल नहीं होते हैं। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत।

बिना फिल्म संगीत में जाने से पहले हम आपसे बातचीत कर रहे थे बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता बनाए। अब हम चलते हैं अगले चर्चा की ओर। बढ़ती महंगाई के लिए महिलाएं बजट बनाना सीखें। श्रोताओं, महंगाई को देखते हुए पैसा बचाना बहुत जरूरी हो गया है ताकि आने वाले समय में हम अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। जी हाँ, बजट समझदारी से खर्च करके हम आसानी से अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आजकल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए काफ़ी लोग बचत करने की सोचते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वे अपने और अपने परिवार के जीवन को आरामदायक और सुविधाओं से भरा हुआ बनाए। लेकिन ये सब चीज़ें बिना आर्थिक योजना के संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने फ्यूचर को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए पैसा बचाना चाहिए। पैसे बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखें और समझदारी से पैसे का इस्तेमाल करें, यानी कि समझदारी से पैसे खर्च करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम कई बार कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमारी ज़रूरत की भी नहीं होती है, तो ऐसे खर्चों पर कंट्रोल करना सीखे। ध्यान रखें, खरीदारी करते समय समय, टाइम या भावनाओं में आकर या फिर किसी को देखकर खरीदारी ना करें। घरेलू खर्चों को भी सीमित करें। इसी के साथ ही आपको अपने

महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और देखें कि कौन सा खर्च जरूरी है और कौन सा नहीं। तो बहनों, बजट बनाकर चलने से आप आसानी से पैसे बचा सकते हैं और आपके पैसे भी बचेंगे। इतना ही नहीं, आजकल ऑनलाइन खरीदारी करना आसान हो गया है, तो इसका भी ध्यान रखें, फालतू की खरीदारी ना करें। साथ ही ईएमआई पर भी खरीदारी करना आम हो गया है, जिसके बाद लोग ईएमआई पर खरीदारी करते रहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। कई सामान खरीद लेते हैं लेकिन हर चीज़ ईएमआई पर लेना सही नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है कि हमेशा ब्याज और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला ले। सखी बहनों, पैसा बचाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें फ्यूचर में आर्थिक सुरक्षा देता है। जी हाँ, अचानक आने वाले खर्च जैसे मेडिकल या इमरजेंसी में मदद मिलती है। इसके अलावा घर खरीदना या फिर शिक्षा या फिर यात्रा जैसे सपने पूरे करने में आसानी होती है। आर्थिक रूप से मजबूत होने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

बहनों, कभी चिपचिपाती गर्मी तो कभी झुलसाती, तो कभी सीधे सिर चढ़कर चक्कर दिलाने वाली आज के इस मौसम में हम बात आज के इस विषय में हम बात कर रहे हैं गर्मी से बचाव के लिए। बहनों, इस मौसम में बाहर सुबह की हल्की धूप कब दोपहर की तेज तपिश में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे में सेहत से जुड़ी परेशानियां भी कम नहीं होती है। थकान, चक्कर आना, डिहाइड्रेशन और भी न जाने क्या क्या हो सकती है। तो बहनों, अपना ख्याल रखें और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी पीते रहे, नारियल पानी पिए और हो सके तो नींबू पानी, नमक डाल के भी आप पी सकते हैं। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले सुनवाते हैं एक और प्यारा सा फिल्म संगीत।

तो बहनों, इस गर्मी से बचाव के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा जा सकता है, जैसे दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच धूप में निकलने से बचे, हल्के सूती कपड़े पहने, सिर को ढक कर रखे, बहुत ज़्यादा व्यायाम मेहनत वाले काम दोपहर में ना करें, रात को पर्याप्त नींद

अगर संभव हो तो दिन में थोड़ी देर आराम जरूर करें। ये आदतें आपको शरीर को ठंडक या ठंडा रखने में मदद कर सकती हैं। तो बहनों, आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा पिन कोड 8460004। तो बहनों, इसी के साथ दीजिए अपने सखी आरती को विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार, आकाशवाणी दरभंगा से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। अब हम जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र के प्रसारण में हिंदी समाचारों के लिए।

0: महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों

को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब जानकारी प्राप्त करें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। आज के देशभक्ति गीत में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म 10 का वो गीत जिसे आबाजी दी उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी अय्यर और डेमिनिक सेरजो ने। देशभक्ति गीत के बाद 1:15 से आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत।

प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरें क्रमशः 2 बजे और 2:05 पर हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रोजगार सूचना हम आपको सुनवाएंगे 2:10 से। दोपहर समाचार का प्रसारण समय होगा 2:15। एक बार फिर से फिल्म संगीत के साथ हम उपस्थित होंगे 2:30 से और आज आप सुनेंगे 3 बजे से लोकगीत।

ये जानकारियां थी इस सभा के कार्यक्रमों की। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा आरंभ होगा संध्या 5 बजे। कार्यक्रम तरुण मिथिला के साथ, संघर्ष प्रभावित क्षेत्र के बच्चों के लिए शांति व्यवस्था में युवाओं की भूमिका, यही है आज की चर्चा का विषय। पांच बजकर 5:40 से फिल्म संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ नए फिल्मी गाने। हिंदी समाचार 6 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे 6:05 पर। विद्यापति गीत 6:10 से और मैथिली संवाद का प्रसारण समय होगा 6:25। गांव घर जागरूक गांव आज आप सुनेंगे, इसके अंतर्गत सुनेंगे विश्व दुग्ध दिवस। खेती गृहस्थी का समय होगा 7 बजे। चर्चा का विषय होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपयोगिता। एक भेंट वार्ता आप सुनेंगे स्ट्रॉबेरी की आधुनिक खेती के बारे में। भेंट वार्ताकार होंगे हिमांशु शेखर, भेंट करता होंगे अनिल कुमार कर्ण। दूसरी सभा में प्रादेशिक समाचार का प्रसारण समय होगा 7:30। फिल्म संगीत एक बार फिर से आप सुन पाएंगे 7:52 से। सिंगरहार का समय होगा 8।

बजकर 15 मिनट, न्यूज एट 9, 9 बजे समाचार संध्या 8 बजकर 45 मिनट पर और उर्दू खबरें 9 बजकर 15 मिनट से। 9 बजकर 30 मिनट पर आनंद लेंगे फिल्मी गीतों का, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से। अब हम आपको लिए चलते हैं देशभक्ति गीत की तरफ। आइए सुनते हैं फिल्म 10 का ये देशभक्ति गीत।

उदित नारायण, शंकर महादेवन, महालक्ष्मी अय्यर, डेमिनिक सेरजो, इन सबों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म 10 में। देशभक्ति गीत के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए और संगीतबद्ध किए कुछ गाने। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आज हम लोग जयंती मना रहे हैं, यानी उनके जन्मदिन को हम आज मना रहे हैं और उनके जन्मदिन पर हम उन्हें याद करते हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया, साथ ही साथ बहुत से फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किए थे। पार्श्व गायन, संगीत निर्देशन और अभिनय, ये इनका काम था, इनकी रुचि थी, और हिंदी सिनेमा को भी इन्होंने अपने गायन में बहुत सारे बेहतरीन गीत दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं के स्वर में और इनके संगीत निर्देशन में कुछ गाने, तो आइए आनंद लेते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ गानों का।

0: श्योर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: चार का मौसम
1: बेशरम

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

दोस्तों, आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं SP बाला सुब्रमण्यम की गाए गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म साजन से, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ थी। समीर का लिखा गीत था नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम के गायकी उनके ही फिल्मों से। आज आपने सुना साजन, एक दूजे के लिए, सागर, हम आपके हैं कौन और ये फिल्में थी जिसके गीत आप सुन रहे थे। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे अपने पटना केंद्र के प्रसारण में प्रादेशिक समाचार और इलाकाई खबरों के लिए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आज तड़के अगलगी की घटना में 4 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी

0: जानकारी के अनुसार आग अस्पताल के आईसीयू में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया। वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश मिश्र ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रूपये अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में 11 मेगा फूड पार्क और 38 फूड पार्क की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन पार्कों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और 50,000 एकड़ रकबा का भूमि बैंक बनाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि सभी आधार कार्ड धारकों को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग की ओर से दरभंगा के अलग अलग प्रखंडों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में लगाए जाएंगे। इधर खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचा है। इधर प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं आज राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि राज्य में संगठन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का चुनाव होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल माध्यम से ही सृजन साथी नामक अभियान की शुरुआत की है जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहले से खात लगाए अपराधियों ने कारोबारी के सिर में 7 गोलियां मारी जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक यात्री बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की टीम ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब

0: ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में आज सवेरे आगजनी के वाक़े में 4 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक आग अस्पताल के ICU में लगी और पूरे अस्पताल में फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमलों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा सके। सीनियर SP कांतेश मिश्र ने बताया कि इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। इधर वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने महलुकीन के सबसे करीबी वर्षा को 4-4 लाख रुपये इमदादी रकम देने का ऐलान किया है। इस बीच वज़ीर सेहत निशांत ने भी हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े की आला सतही जांच होगी और जो भी इसके लिए कसूरवार पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रियासत में 11 मेगा फूड पार्क और 38 फूड पार्क की तामीर होगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने इन पार्कों की तामीर के लिए ज़मीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और 50,000 एकड़ रकबा का ज़मीनी बैंक बनाने का अफसरों को हिदायत की है। वज़ीर आला ने अफसरों को मुतल्लिका महकमों के साथ राबता बनाकर सनअतों के क़याम के लिए ज़मीनी तहवील के काम में तेज़ी लाने की हिदायत की। मरकज़ी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे उन दावों की तर्दीद की है जिसमें कहा जा रहा है कि सभी आधार कार्ड होल्डर को इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। PIB की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा है कि मरकज़ी हुकूमत ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। नौजवान रोज़गार और हुनर फरोग महकमा की जानिब से दरभंगा के अलग अलग ब्लाकों में आज से रोज़गार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग ब्लाकों में लगाए जाएंगे। इधर खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक रोज़ा रोज़गार मेला मुनक़द किया जा रहा है। जुनूब मगरबी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून की आमद की पूरी कैफियत बनी हुई है। इस बार मानसून अपने मुकर्रा वक्त से 3 दिन देर से पहुंचा है। इधर रियासत में शदीद गर्मी की हालत बनी हुई है। कई जगहों का दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 40.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत के साथ बक्सर रियासत का सबसे गर्म जगह रहा। मौसम पेशगोई में कहा गया कि अगले 3 दिनों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। वहीं रियासत के शमाल मशरक़ी जनूबी वस्त और जनूब मशरक़ी हिस्सों में कुछ मकामात पर मामूली बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का भी इंतबाह जारी किया गया है। कांग्रेस के रियासती सदर राजेश राम ने कहा है कि रियासत में तंजीम की जल्द ही तौसी की जाएगी। कटिहार में नामानिगारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल तवसुत से ब्लॉक सदर से लेकर रियासती नायब सदर तक का इंतखाब होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल तवसुत से ही सृजन साथी नाम की मुहिम का आगाज़ किया है जिसमें सरगर्मी से लोग हिस्सा ले रहे हैं। भागलपुर ज़िला के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास जराइम पेशा अनासिर ने एक ज़मीनी कारोबारी को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने बताया कि पहले से मौके की ताक में लगे जराइम पेशा अफराद ने कारोबारी के सर में 7 गोलियां मारी जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जराइमकार अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अररिया टाउन थाना हलका के गोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापामारी में एक मुसाफिर बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। गया रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP की टीम ने 3 औरत चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव

ये 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए रोजगार सूचना। भारतीय नौसेना भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। कुल पदों की संख्या 60 है। आवेदन शुरू होने की तिथि है 29 मई 2026। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 जून 2026। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच हुआ हो। SSC CGL संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित है। कुल पदों की संख्या है 12,256। 21 मई 2026 से आवेदन शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 जून 2026। आयु सीमा है 18 वर्ष से 32 वर्ष, जिसकी गणना 1 अगस्त 2026 को आधार मानकर की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

0: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती 11,127 पदों पर करने जा रही है। आवेदन शुरू हो चुकी है 15 मई 2026 से। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है। इच्छुक अभ्यर्थी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आकाशवाणी दरभंगा से अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है मीडियम वेव के 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। फिलहाल जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचारों के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में

0: उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत

0: वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी

0: मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मित एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के 1st संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए आनंद लें फिल्म संगीत का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना हीरो हेट स्टोरी 3, सनम रे, प्यासा, तुमको न भूल पाएंगे और पटियाला हाउस के गाने, महालक्ष्मी अय्यर हार्डकोर, अलका याग्निक, सोनू निगम, अदनान सामी, सुनिधि चौहान, मिथुन, अरिजीत सिंह, अरमान मलिक और रीतिका और पलक मुच्छल। ये थे आज के इस फिल्म संगीत के कलाकार जिनके गाने आपने सुने। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोकगीत।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाय लगत फूल प्रकृति में घुराय लगत ऊर्जा आब वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारी एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीज़ें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठ कर सभी भोजन किया करते थे अलग अलग शहरों और देशों में, अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों

0: की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती थी। लेकिन अब वो समय कहाँ है? और अब समय एक गाना सुनाने का,
1: सुनते हैं गीत।

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे
0: स्पर्श के माध्यम से
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, हमारे
0: नीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माए, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी है, वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा।

0: दोस्तों विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, हाँ मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीख ते हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली। तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहाँ पे टकराव ज़्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से

0: कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन दो तीन लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं हमने तो, अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने

0: चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरे धर्म पति इस मामले में 2 कदम आगे
1: क्या बात है भाई,
0: हैं।
1: बहुत
0: महिलाएं हर
1: बढ़िया
0: क्षेत्र में आगे
1: जी। तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में, ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
0: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाए, प्यार तलाशा जाने लगता है, तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है, इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहाँ पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज़्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहाँ पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें आप।
0: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: कहाँ हद से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले।
1: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज़ मी मुझे कुछ कहना है, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय आप गाना सुनवा दें।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी,
0: आम आम बहुत खास है, कह रही
1: आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में। फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के, कभी काट के। तो आप बताइए आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब मुझे तो, काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दो। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो
0: बस। हाँ, मतलब एक आम जैसे तैसे, हाँ, उससे ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है।
1: फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोडोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा धन गाना सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: वो कहाँ है?
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या दर्द था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुल गोविंद मिश्रा, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने डेली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर। बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा था।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये तीन दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर, वो वाला फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक्ट जो शुरुआत किए हैं, एक बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को फिर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं आप तो, मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया, क्या बात है।
0: मजा आ गया क्या बात है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आपके बड़े मतलब सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका, जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे बड़ी जलन होती थी।
0: अरे बाप रे,
1: मैं भी बात कर रही हूँ। यस
0: क्या बात है, देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में समझा, आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
0: ओहो क्या बात है।
1: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे ही मैं आप भी मेरे जहन में हो
0: जी।
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ
0: जी।
1: लोग मेरे से तंग आ गए, कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहे हैं आपके साथ, है ना?
1: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूँ, उनका यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी। तो बताइए कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी,
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं
0: जी,
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
0: जी,
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको?
1: अरे अरे मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले याद है, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है
1: क्या बात है।
0: जी शुक्रिया।
1: बिलीव न करो।

0: 57 नाउ और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
1: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए।
0: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बस।
1: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
0: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू।
1: शुक्रिया, हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे ही आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम।

तो आज कार्यक्रम में चर्चा का विषय है, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत आपस में बातचीत को लेकर करते हैं। तो आज का विषय है संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए शांति स्थापना में युवाओं की भूमिका। दोस्तों, देश के हर क्षेत्र में अगर हम विकास चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, तो ऐसे में आप युवाओं की भूमिका सर्व प्रमुख होती है। आपके बिना कोई भी काम करना आसान नहीं होता है। आपका साथ मिल जाए तो कोई भी मुश्किल आसानी के साथ हम लोग तय कर लेते हैं। दोस्तों, आए दिन कहीं कहीं संघर्ष की बात सुनने को मिलती है। ऐसे में जहां कहीं भी संघर्ष है, जहां कहीं भी विवाद है, तो उस जगह, उस क्षेत्र में यदि सबसे ज्यादा और पहले कोई प्रभावित होता है तो वह बच्चा होता है। यानी वहां के जो बच्चे होते हैं सबसे पहले प्रभावित होते हैं। तो चूंकि समस्या है, हमें समाधान भी ढूंढना है, और आप सबसे आगे बढ़कर उसमें अपना योगदान देते हैं, तो इस विषय को भी आप प्रमुखता से लें। आप युवा पीढ़ी युद्ध या हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों की मदद कर सकते हैं, समाज में स्थिरता ला सकते हैं। ऐसे कई पहल हैं, कई कदम हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। आप युवा स्वयंसेवक बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उन्हें आघात से उबरने में मदद करने के लिए बड़े भाई बहन या मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं। बच्चे आपकी बात को बहुत ही करीब से सुनेंगे। इसके अलावा युवा सोशल मीडिया और स्थानीय समुदायों के माध्यम से बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। आजकल देखते हैं सोशल मीडिया कितना आगे हो चुका है। पल भर में कोई भी सूचना आप कहीं तक पहुंचा सकते हैं। तो आप जहां नहीं पहुंच सकते हैं, सदैव आप वहां सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है, आप उसे अपना सकते हैं। अपनी बातें, सूचना उन क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं। खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से आप युवा बच्चों को एक ऐसा स्थान प्रदान कर सकते हैं जहां वे सुरक्षित महसूस करें। युवा विभिन्न समुदायों के बीच संवाद का पुल बनकर भविष्य में संघर्ष को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, यदि कहीं भी अगर इस तरह की बात है, चाहे देश में या फिर विदेश में, आप अपना योगदान दे सकते हैं। आप अपनी सूचना, अपनी बात जो है, हर तरीके से वहां आसानी से पहुंचा सकते हैं। चलिए, बातें हुई कार्यक्रम में, अब हम आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

इथं यशोदा के युववाणी कार्यक्रम हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए पेशे फिल्म संगीत, नए गाने।

फिल्म संगीत में अभी आप नए गाने सुन रहे थे। फिल्में थी ऑल इज वेल, सनमरे, हेट स्टोरी 2, हीरो पंती। आवाज़ थी अरिजीत सिंह, अमाल मलिक, पलक मुच्छल और श्रेया घोषाल की। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार

0: साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। संध्या 6:25 पर मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गामघर सुनेंगे संध्या 6:30 पर। किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा संध्या 7:00।

फिल्मी गाने आप सुन सकेंगे संध्या 7:52 पर और रात 9:30 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुनिएगा रात 8:15 पर। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:00। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

कल प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे 9:10 पर। कल दिन में 11:00 सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं विश्व मोहन भट्ट। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम नारी संसार सुनेंगी 2:12:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश कल दिन में 1:15 पर।

रोजगार सूचना दोपहर 2:10 पर सुनिएगा। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी संध्या 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम से। हफ्तावार जायजा आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। कुछ विद्यापति गीत संध्या 6:15 पर। ग्रामीण भाइयों के लिए गांव घर कार्यक्रम संध्या 6:30 पर और किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी संध्या 7 बजे। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार सुनिएगा रात 8:15 पर। रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

विद्यापीठ गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रामकुमार मल्लिक को। ये कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 6:25 होने वाले हैं। अब मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना से प्रस्तुत संवाद, संवादक संग हम छी बैजू कुमार झा। मुजफ्फरपुरक एकटा निजी अस्पताल में आइ भोर अगलगी केर घटना में 5 मरीजक मृत्यु भऽ गेल। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जनौलनि जे मृतक लोकनिक शव केर पोस्टमार्टम कऽ हुनक निकटतम परिजन के सौंप देल गेल अछि। संगहि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिजन लोकनि के 4-4 लाख टाका अनुग्रह राशि सेहो उपलब्ध करा देल गेल अछि। श्री सेन जनौलनि जे मामिलाक जांच लेल 5 टीमक गठन कयल गेल अछि। एहि टीम के मामिलाक सब बिंदुक जांचक निर्देश देल गेल अछि। एम्हर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एहि घटना पर गहीर दुख व्यक्त कयलनि। ओ कहलनि जे घायल सभक समुचित उपचारक लेल स्थानीय प्रशासन के निर्देश देल गेल अछि। एहि मध्य स्वास्थ्य मंत्री निशांत सेहो हादसा पर गहीर दुख जतबैत कहलनि जे घटनाक उच्च स्तरीय जांच होयत आ जे भी एहि लेल दुखी होयत हुनका पर कार्रवाई कयल जायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बढ़ैत आबादी आ यातायात के जरूरत के देखैत ग्रामीण सड़क सभक चौड़ीकरण योजना के तेजी से पूरा करबाक निर्देश देलनि अछि। आइ पटना में

0: ग्रामीण विकास विभागक समीक्षा बैसकेर दरमियान ओ कहलनि जे नीक कनेक्टिविटी सँ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाकेँ नव रफ्तार भेटत आ रोजगारक नव अवसर उत्पन्न होयत। ओ ग्रामीण सड़क सभक नियमित निगरानी सुदृढ़ीकरण केर आवश्यकता पर सेहो जोर देलनि। ओतहि पथ निर्माण विभागक समीक्षा बैसक में मुख्यमंत्री सभ पुलक नियमित निरीक्षण आ सुरक्षा ऑडिट करेबाक निर्देश देलनि। श्री चौधरी कहलनि जे सड़क आ पुल निर्माण काज सभक गुणवत्ता सँ कोनो समझौता स्वीकार्य नहि होयत। मुख्यमंत्री मुंगेर बरियारपुर घोरघट सुल्तानगंज भागलपुर सबौर फोर लेन गंगा पथ परियोजनाकेँ हाइब्रिड एन्यूमिटी मोड केर तहत करयबाक लेल कहलनि। जदयू केर वरिष्ठ नेता आ मंत्री श्रवण कुमार कहलनि अछि जे बिहार विधान परिषद चुनावकेँ लऽ कऽ जल्दिए सीट सभक बंटवाराकेँ अंतिम रूप दऽ देल जायत। आइ पटना में संवाददाता सभसँ गपशप मे ओ कहलनि जे सीट सभकेँ लऽ कऽ एनडीए केर वरिष्ठ नेता लोकनिक मध्य विचार विमर्श चलि रहल अछि। युवा रोजगार आ कौशल विकास विभागक मंत्री अरुण शंकर प्रसाद कहलनि अछि जे रोजगार मेलाक तहत मई मास मे 10,882 युवा लोकनिकेँ विभिन्न कंपनी सब रोजगार प्रदान कयलनि। पटना में संवाददाता सभसँ गपशप मे ओ कहलनि जे जुलाई मास धरि 20,000 और युवा लोकनिकेँ रोजगार प्रदान करबाक लक्ष्य अछि। युवा रोजगार आ कौशल विकास विभाग दिससँ दरभंगाक फराक फराक प्रखंड सभमे आइसँ रोजगार मेलाक आयोजन कयल जा रहल अछि। ई मेला 6 जून धरि फराक फराक प्रखंड सभमे लगाओल जायत। एम्हर खगड़िया आ मोतिहारीमे आइ एक दिवसीय रोजगार मेलाक आयोजन कयल गेल। कांग्रेस केर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कहलनि अछि जे राज्य में संगठनक जल्दीए विस्तार कयल जायत। कटिहार में संवाददाता सभसँ गपशप मे ओ कहलनि जे आब डिजिटल माध्यमसँ प्रखंड अध्यक्षसँ लऽ कऽ प्रदेश उपाध्यक्ष धरिक चुनाव होयत। श्री राम कहलनि जे पार्टी डिजिटले माध्यमसँ सृजन साथी नामक अभियानक शुरुआत कयलक अछि जाहिमे बढ़ि चढ़ि कऽ लोक भाग लऽ रहल छथि। दक्षिण पश्चिम मानसून केरलम में दस्तक दऽ देलक अछि। मौसम विभाग कहलक अछि जे मानसून केर प्रसारक अनुकूल परिस्थिति बनल अछि। एहि बेर मानसून अपन तय समय सँ 3 दिन देरी सँ पहुँचल अछि। एम्हर प्रदेश में भीषण गर्मीक स्थिति बनल अछि। कतेको ठामक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस केर पार चलि गेल अछि। पछिला 24 घंटाक दरमियान 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमानक संग बक्सर राज्यक सबसँ गर्म स्थान रहल। मौसम पूर्वानुमान में कहल गेल जे अगला 3 दिनक दरमियान अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरीक संभावना अछि। ओतहि काल्हि प्रदेशक उत्तर पूर्वी आ दक्षिण पूर्व भाग सब में किछु ठाम हल्का वर्षा भऽ सकैत अछि। एहि दरमियान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटाक रफ्तार सँ धूल भरल बिहाड़ि चलबाक चेतावनी सेहो जारी कयल गेल अछि। भागलपुर जिलाक गोपालपुरक पोखरिया चौक लग अपराधी सब एकटा जमीन कारोबारीक गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक। पुलिस जनौलक अछि जे पहिने सँ घात लगेने अपराधी सब कारोबारीक माथमे 7 गोली मारलक जाहिमे हुनक ठामहि मृत्यु भऽ गेलनि। अपराधी सभक गिरफ्तारी लेल छापेमारी चलि रहल अछि। अररिया नगर थाना क्षेत्रक गोढ़ी चौक लग पुलिस छापेमारी कऽ एकटा यात्री बस सँ 708 ग्राम स्मैक केर सङ्ग 2 तस्करकेँ गिरफ्तार कयलक अछि। एहि सङ्ग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए काम घर कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम गाम घर सुनब वाला सब स्नेही श्रोता लोकन के सत्तो भाई के दिशा नमस्कार, संगे अनिल भाई अहू के नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार सत्तो भाई, आई बृहस्पति दिन आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुनै छी कार्यक्रम जागरूक गाम। तो आजुक कार्यक्रम में हम सब गप करब जागरूकता के संबंध में, सतर्कता के संबंध में, संगे

0: जीवन में सकांच रहवाक संबंध में देखियो गर्मी अपन प्रचंड रूप धेने जा रहा
1: है। चाहिए,
0: गर्मी दिनानुदिन बढ़ले जा रहा है तो एहन समय में खास कर जखन घर से बाहर होई छी तखन घर जखन जाए छी तखन संगे रास्ता पेरा में एकर अतिरिक्त खान पान पर दैनिक के आहार विहार पर किछ ध्यान राखब आवश्यक
1: छै।
0: जखने देखब अहा कि भिनसर घर से बाहर होई छी अहा तो ओइ काल में जे छै भिनसरे से रौद अपन रूप देखब लगैए। तो जखन घर से एकदम आवश्यकता हुए तखने घर से बाहर हुई धियापुता लोकन के एखन जे छै से गर्मी
1: छुट्टी भ गेल ने
0: तो गर्मी छुट्टी के अर्थ ई छे जे अहाँ के काज सब देल गेले गृह काज सब देल गेले ओकरा घर में बैस के पूरा करो अनेरे नहीं हुए जे जे कतो खेला रहल छी कतो रौद में घूम रहल छी से नहीं हेबाक चाहिए। किएक ई गर्मी जे ये प्रचंड गर्मी ककरो कखनो कतो आक्रांत कर सकै पानक सेवन बेसी से बेसी करक चाहिए।
1: आ ओकर अलावा अहाँ के अनिल भाई हमरा लोकन के जखन निकली तो छत्ता लौकर निकली आँख में यदि चश्मा है तो चश्मा लगा के निकलवा के चाहिए संगे पानी भरपूर मात्रा में पीवा के चाहिए। आ घर से जखन विदा भेलों तो जखन लौटे छी तखन तुरंत कपड़ा नहीं खोल देवा के चाहिए ओकरा थोड़े का सुस्ता ली तकर बाद जहन अति पसेना सब सूख जाए तखन हमरा लोकन के कपड़ा खोलवा के चाहिए। आर जखन तो देखिए रहल छे जे प्रचंड सन के रौद उगत है 37-38 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहल है तो एहन समय में हमरा लोकन के सावधानी बड़ बेसी आवश्यक
0: आ संगे संग एक बड़ बेसी महत्वपूर्ण गप कि जखन आवश्यक आवश्यकता हुए तखने घर से बाहर होई आ जखन बाहर होई तो निश्चित रूप से छत्ता व माथ पर तौनी रख हवा चले या से होते संभव हुए तो जखन वाहन पर छी तो मास्क जरूर लगा
1: के चली छै
0: आर देह जे छै से झांपल संपूर्ण देह झांपल रहे ऐसे गर्मीक प्रकोप कम होइए। संगे संग देखब जे गर्मीक मास में जे छै से हल्लुक रंग वाला कपड़ा पहिरक चाही कारी कपड़ा नहीं पहिरक चाही ई जे होइए माने गहीर रंग वाला जे कपड़ा होइए ओ गर्मी के अवशोषित करैए जाहि सब बेसी गर्मी लगैए उज्जर कपड़ा भेल वा हल्लुक रंग के जे कपड़ा होइए ओ गर्मी के की करै छै प्रावर्तित करै
1: छै। आ संगे अहाँ के इहो ध्यान रखबा के चाही जे सूती कपड़ा हमरा लोकन के बेसी से बेसी उपयोग करबा के चाही गर्मी महीना में पोलिस्टर से बचबा के चाही कियाकि बहुत आदमी के देखबनि जे अहाँ के अथी चेचक चाहे दिनाय ई चाहे खुजली ई सब हुआ के संभावना ओहि कपड़ा में बेसी रहै छै पोलिस्टर में तो ई नहि जे अहाँके कोनो रोग से ग्रसित भ जाए हमरा लोकन एहि के लेल चाही जे सबसे पहिने सूती कपड़ा के बेसी से बेसी उपयोग करबा के चाही
0: माने घर में रहू गर्मी के प्रकोप से बचू। अपन सबक के मिथिलांचल के जे सभ्यता है जे संस्कृति है ई संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध अठाम अतिथि के देवता कहल गेले ता एहने सन भाव ल क एकटा कलाकार अपन गीतक माध्यम से मन के भाव व्यक्त कर रहल छै ओ कलाकार छै सज्जन कुमार चौधरी त हिनका स्वर में सुनी एकटा सुंदर सन गीत
1: सुनल जा।

0: बटोही रहिजा हमरे गाँव, ई बहुत नीक गीत छला। कलाकार छलथि सज्जन कुमार चौधरी, तो इनका बहुत धन्यवाद दै छन। आ देखू जे गर्मी के महीना में आहार विहार पर सेहो ध्यान देनाई आवश्यक भऽ जाइत अछि। ओहिमे अहाँके अखुनका समय में तरबूज भेल, खरबूज भेल, खीरा भेल, सलाद भेल, ई सब के बेसी से बेसी उपयोग करबा।
1: एकटा गप कहब सत्तो भाई, चलन में जे आबि गेल है लोग के जे फ्रिज वाला पानी बेसी लोग के निक लगे छे, तो वो आक्रांत सेहो तहिना करे छे। जो घैल वाला पानी पीब ने तो वो हानि नहीं करे छे,
0: बेसी दिन
1: धरि कनी कम ठंडा रहे छे, मुदा गुणकारी होय
0: छे।
1: तें जो बड्ड बेसी आवश्यकता हुए फ्रिजक पानी के पीबा के, तो ओय में जे नॉर्मल पानी छे, सामान्य पानी छे, कनेक मिला दियो, आधा आधी को दियो, तखने पीबो, आ नहीं तो लगले छन में छना के।
0: तो आहार बिहार में आहा के दूध से हो एकटा आहार है, जे जाय में आहा के कैल्शियम भ गेल, प्रोटीन भ गेल, विटामिन भ गेल भरपूर मात्रा में पायल जाते है। आ ई हड्डी के मजबूत बनाब में आ मांसपेशी के विकास आ शरीर के ऊर्जा प्रदान कर में मदद करते है। खास कर जे धियापुता छे, जे बुजुर्ग छे, ओ स्वस्थ शरीर के लेल दूध के बेसी से बेसी सेवन करत, जाहिसँ हुनका फायदा भेटै छन्हि। की
1: देखियौ, आदिकालसँ जे हमर अहाँके भोजन के अभिन्न अंग रहल अछि
0: दूध ही रहल।
1: दूध के संपूर्ण आहारक संज्ञा देल गेल अछि, दूध के अमृत कहल गेल। खास कऽ नवजात शिशु के जे मातृ दूध होइए, ओ जे छै से जीवनदायिनी
0: होइए।
1: ओहिमे बहुत रास एहन तत्व होइ छै जाहि मे रोग प्रतिरोधक क्षमता धियापुता में विकसित होइए।
0: ओकर बाद अहाँ के माय के दूध तो सबसे उत्तम भेबे केलै अनिल भाई, संगे गाय के दूध सेहो अहाँ के बड बेसी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, हड्डी के मजबूत, दांत के मजबूत, बुढ़ापा में जे कमजोर भ जाते है हड्डी, ओकर खतरा कम करब में दूध के बड बेसी महत्व है।
1: देखियो, ओना जे दूधक गप करब ने, तो सामान्य रूप से दूध के जे माने उत्पादन होइए ओ बच्चा के लेल होइए, मुदा किछ स्तनधारी एहनो छै जेकर दूधक मात्रा बेसी होइए, ओकर दूध के सेवन हम अहाँ व्यवहार में ओकरा करै छी, भोजन के रूप में करै छी, पीबाक लेल करै छी, वा एकर विभिन्न तरह उत्पाद सब सेहो बनैए। खास कऽ जे नवजात बच्चा ओकर पोषण के लेल तो बड्ड बेसी महत्वपूर्ण होइए। कोनो आहार के जे पोषण क्षमता है उमे खास गप पर ध्यान राखब आवश्यक है, जेना जे पोषण के लेल ओ कतेक ऊर्जा दैए, आहार शरीर में आवश्यक तत्व जेना वसा, अम्ल, एमिनो एसिड, खनिज, लवण, विटामिन्स के कतेक मात्रा ओहि में उपस्थित
0: है,
1: संगे ओहि आहार से प्राप्त जे तत्व है ओकर कतेक मात्रा पचवा जोगे शरीर से आसानी से माने ग्रहण कैल जाइए। कुल मिलाकर ई कहल जा सकते है जे नीक आहार वह है जे स्वास्थ्य के ठीक रखे आ रोग व्याधि से बचेवा शक्ति प्रदान करे।
0: संगे दूध में आके विटामिन डी, ए, B12 आके सेहो पायल जात अछि। ई त्वचा, आँखि, मस्तिष्क के विकास के लेल बेहद आवश्यक अछि। दूध के संतुलित आहार के सेहो कहल गेल अछि, कियाकि दूध में अहाँ के बहुत रास कहबे केलहुँ, अहाँ कहबे के लिए बहुत रास चीज पायल जात अछि, जे धियापुता संगे बुजुर्ग युवा सबके लेल आवश्यक छन। तो दैनिक आहार में ताजा पौष्टिक दूध हमरा लोकन के बेसी से बेसी सेवन करबा के चाही, आ राति में सुत के समय में गर्म दूध के पीबा के

0: एहिसँ की होइत अछि तऽ नींद बढ़िआँ अबैत अछि आ सङ्गे अहाँके हमरा लोकनिके स्वस्थ बेसी दिन धरि दूध राखैत अछि। दूधके उपयोगी अहाँके कऽ सकैत छी दही भऽ गेल, मक्खन भऽ गेल, घी भऽ गेल, पनीर भऽ गेल, मट्ठा भऽ गेल, ई सबके सेहो बनाकऽ ओकर उपयोग कयल जा सकैत अछि। सङ्गे मिठाइ सेहो बनैत अछि जाहिमे अहाँके बहुतो रङ्गके मिठाइ एहिसँ बनैत अछि, रबड़ी भऽ गेल, छेना भऽ गेल, आर बहुत रास दूधके उत्पाद बनायल जाइत अछि जे शरीरके मुख्य पोषक तत्वके पूर्ति करैत अछि आ ई आहारके लेल बड़ बेसी आवश्यक अछि। अनिल भाई
1: देखियौ, दूधक जे भोजन रूपमे हम अहाँ ओकरा शामिल करै छी, एकर उद्देश्य की अछि? तऽ दूध एकटा एहन भोजन अछि जाहिमे समस्त पदार्थ जे पर्याप्त आ उचित मात्रामे उपस्थित रहैए। एकर विश्लेषणसँ ई गप सिद्ध भऽ चुकल अछि जे दूध सम्पूर्ण आहार अछि। एकर उद्देश्यके सन्दर्भमे जँ विचार करी तऽ मानव पोषणमे दूध आ दूधसँ बनल पदार्थ बड्ड बेसी उपयोगी होइए। मुदा कहि दी जे मनुखके भोजनमे कोन कोन पोषक तत्व सब हेबाक चाही, कोन कोन पदार्थके आपूर्ति हेबाक चाही, एकर सभक जानकारी निश्चित रूप से राखब आवश्यक अछि। संगे एहिमे कतेक मात्रा में ऊर्जा, कतेक मात्रा में प्रोटीन आ आवश्यक तत्व हेबाक चाही। दूध आ दूध से बनल पदार्थ जे एहि सब चीजक आपूर्ति लगभग सामान्य रूप से करैए। जेनाकि हम सब एखने गप केलहुँ जे दूध के संपूर्ण आहारक संज्ञा देल गेल अछि। संपूर्ण आहार ओ अछि जाहिमे शरीर के भेटऽ वाला आवश्यक तत्व, ऊर्जा, अम्लीय वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स के संतुलित मात्रा उपस्थित रहे जाहिसँ शरीर के प्रत्येक क्रियाक लेल आवश्यक तत्व भेट सके। स्वास्थ्य के ठीक रखबाक लेल बीमारी सँ बचेबाक ओहिमे क्षमता हेबाक चाही। दूध एकटा एहन भोजन अछि जाहिमे समस्त पदार्थ उचित मात्रा में उपस्थित रहैए, तैं एकरा संपूर्ण भोजन, संतुलित भोजन कहल गेल अछि।
0: स्वास्थ्य विशेषज्ञ जे छथि, स्वास्थ्य विशेषज्ञ ओहो कहै छथि जे एकटा वयस्क के प्रतिदिन 300-400 मिलीलीटर दूध सेवन करबाक चाही। आ दूध यदि अहाँके देखैत हेबै जे पैघ पैमाना पर उत्पादन यदि होइत अछि तऽ गामो घरमे अहाँ डायरी खोलि कऽ एकरा रोजगारके रूपमे लऽ सकै छी।
1: एकर
0: दूधके पहुँचा दियौ, ओकर फैटके अहाँके नापल जायत, यदि सही दूध अछि तऽ अहाँके उचित दाम ओकर देल जाइत अछि।
1: देखियौ, दूध एकटा स्वादिष्ट आ रुचिकर खाद्य पदार्थ, एहिमे लगभग 80% सँ बेसी पानि हेबाक कारण पेट भरबाक संग भूख के सेहो शांत करै
0: छै।
1: दूध आ दूध सँ बनल सबटा पदार्थ जे छै सुविधा सँ पचि जाइए। एक लीटर दूध में लगभग अपने के 800 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करैए। दूध में सबटा पर्याप्त मात्रा में तत्व उपस्थित रहैए। संगे आपस में कोनो जे अनुपात होइए कोनो अवयव वा तत्वके, ओ अनुचित नहि होइए, उचित होइए, जाहिसँ ओ संतुलन बनल रहैए, शरीर द्वारा ओकर बेसी से बेसी व्यवहार होइए।
0: छै संगे अहाँके जिनका वजन बेसी भऽ गेल छनि ओकरा नियंत्रण करबामे सेहो दूधके बड्ड बेसी महत्व अछि। एकर दूधके यदि नियमित सेवन करै छी, खास कऽ कऽ गायके दूधके, तऽ ओहिसँ अहाँके दैनिक आहार तऽ पूर्ति होइत अछि, ताजा रहैत अछि, पौष्टिक आहार तऽ भेटबे करैत अछि। सङ्गे गर्म दूध पीलासँ अहाँके जे शरीरके जे चर्बी बढ़ि जाइत अछि ओहोमे कमी करबामे एकर बड्ड बेसी आवश्यकता होइत अछि।
1: देखियौ, दूध आ दूधसँ बनल पदार्थ जेना दही भेल, योगहर्ट भेल, एहिमे किछु एहन तत्व होइए जकर जँ लगातार अपने सेवन करै छी तऽ मनुष्यके आयुमे वृद्धि सेहो होइ
0: छै।
1: किएकि देखियौ, हमर अहाँके जे शरीर अछि ओकर जे माने कहि सकै छी कोशिका अछि ओकर क्षरण होइए एकटा खास आयुके बाद जे छै से नव कोशिकाके निर्माण कम भऽ जाइए, तऽ जे बचलाहा कोशिका अछि ओ नष्ट हुअ लगै
0: छै,
1: तऽ ओहिसँ बचबाके लेल दूध सेहो अनिवार्य मानल गेल अछि।
0: तऽ दूधके हमरा लोकनिके प्रतिदिन सेवन करबाके चाही। सङ्गे दूध जखन उपयोग करी तऽ ओकरा अहाँके से

0: गरम कऽ देबाक चाही, तकर बाद ओकरा पीबाक चाही। ई नहि जे कच्चा दूध पीली, ई पर ध्यान सेहो रखबाक चाही। आ सर्दी भऽ गेल, जुकाम भऽ गेल, बोखार जकरा कहै छै, ओहिमे सेहो हल्दी मिलाकऽ यदि दूध पील जाय तऽ एहिसँ प्रतिरोधक क्षमता शरीरके बढ़बैत अछि, थकान दूर करैत अछि, सर्दी सेहो कम कऽ दैत अछि। बोखारमे अहाँके जे डॉक्टर छथि ओहो कहै छथि दूधके बेसीसँ बेसी सेवन करबाक।
1: देखियौ, परीक्षणसँ ई गप सिद्ध भऽ चुकल अछि जे दूध पियऽवला छात्र छात्रा लोकनि हुनकर शरीरके भार संतुलित रहै छनि, सङ्गे हुनकर लम्बाईमे जे छै वृद्धि ओहो पर्याप्त होइए। एहन देखल गेलै लगातार दूधके उपयोग करयवला धियापुताके मानसिक विकास सेहो नीक होइए। तैं दूधके आहार रूपमे निश्चित रूपसँ सेवन करक चाही।
0: आ खास कऽ कऽ जे धियापुता छै जे पढ़ाइ लिखाइ कऽ रहल छथि हुनका लेल दूध बड़ बेसी आवश्यक भऽ जाइ छनि, किएकि भरि दिन ओ अहाँके इसकुलसँ थकावटमे आबै छथि आ तकर बाद हुनका दूध यदि दऽ दियौन तऽ थोड़े देहमे फुर्ती आबि जाइ छनि, तकर बाद पढ़बामे सेहो मोन लागै छनि। तऽ दूध अहाँके बड बेसी उपयोगी चीज अछि। एकर अहाँके डायरी उत्पाद सेहो हमरा लोकनि खोलि सकै छी। यदि अहाँ दूधके इकट्ठा करै छी तऽ ओहिसँ दही, मक्खन, घी, पनीर ईसब बनाकऽ सेहो बेच सकै छी। आ बहुतो रास गाममे आप देखबै दूध डेयरी सेंटर खोलि देल गेल अछि आ सरकार दिससँ एकरा लेल प्रोत्साहित सेहो कयल जाइत अछि। यदि अहाँके ऋणके आवश्यकता अछि तऽ ऋण उपलब्ध करायल जाइत अछि। तऽ अहाँके डेयरी उद्योग अखनके समयमे बड बेसी आवश्यक भऽ गेल अछि, खास कऽ कऽ जतय मालजाल बेसी पोसल जाइत अछि ओहि क्षेत्रमे देखबै जे गामे गामे डेयरी उद्योगके आब खोलल गेल अछि। तऽ ओतय दूधके कलेक्शन कयल जाइत अछि आ ओकरा अहाँके से बेचबामे कनिकबो असुविधा नहि होइ छै। दूध कलेक्शन करयवला दूध अहाँके खुद खरीद कऽ लऽ जायत आ ओकरा अपन बाजारमे बेच देत।
1: देखियौ, दूधके महत्व एहि गपसँ अन्दाज लगा सकै छी, खास कऽ नवजात शिशुके 6 मास धरि जँ अपने लगातार ओकरा दूध पर राखै छी, ओना तऽ रखबे करै छी, तऽ ओहन बच्चाके वृद्धि आ बढ़वार जे छै से खूब नीक होइए। आजकल जे छै से सबटा डॉक्टर लोग सलाह दै छथि कि नवजात शिशुके जे दूध दऽ रहल छी ओहिमे मायके दूध अमृत मानल गेल अछि। दूधसँ खाली शरीरक आवश्यकताक पूर्ति नहि होइए, 1 से 5 वर्षक धियापुताके प्रतिदिन कम से कम 0.5 लीटर दूध देलासँ ओकर 25% खाद ऊर्जा, 90% कैल्शियम, राइबोफ्लोविन विटामिन आ 33% विटामिन आ थायमिन बी के आपूर्ति होइए। जेना पहिने हम सब गप केलहुँ जे दूधमे लौह तत्व, तांबा, निकोटिनिक अम्लके मात्रा आवश्यकतासँ कम होइए।
0: तो अनिल भाई हमरा लोकनि फेर गपशप करब, लेकिन पहिने सुनै छी एकटा लोकगीत।
1: तो सुनी हम सब ई सुंदर सन गीत
0: सुनल।

0: हे माँ तो अहाँ ई कुमकुम कुमारी के गल सुनै छल कुमकुम झा के गल तो इनका बहुत नीक गीत छल आर गप करै छलहुँ हैं जे दूध के आहार में निश्चित रूप से हमरा लोकन के लेबा के चाही ओहो एक दिन नहीं प्रतिदिन एकरा उपयोग में लेबा के चाही आ दूध के निश्चित रूप से सुबह में आ रात में अवश्य उपयोग करबा के चाही
1: यह कारण सतो भाई अहाँ देखब जे अधिकांश घर में बेसी से बेसी घर में कोनो न कोनो रूप से दूध अवैया वा एकर उत्पाद के व्यवहार हेवेटा करे संगे जे अइ काज में लोग लागल छे उनका रोजी रोजगार के व्यवस्था सेहो
0: छे खास कर के जे युवा लोकन छथि ओ यदि अहाँ के डायरी खोल चाहे छथि तो अपनों से 10-20 गाय पोस के चाहे महीस पोस के अपन घरे पर ओ रोजगार कर सकै छथि आ दूध दुह के अहाँ के डायरी खोल के ओ निक कैचा कमा सकै छथि एहि लेल सरकार दिस से सेहो मदद देल जाइत अछि तो हमरा लोकन के से जानकारी हेबा के चाही जे कतौ से कोन ऋण उपलब्ध करायल जाइत अछि तो एकरा ऋण लऽ के सेहो हमरा लोकनि चालू कऽ सकै छी एहि के लेल एकटा गाय से दू गाय से तीन गाय धीरे धीरे बढ़ेबा के चाही आर जहन गाय बेसी भऽ गेल तकर बाद ओकर आवास के भेल ओकर सही पोषक तत्व जे खनिज लवण सब सबटा होइ छै से खाना में देबा के चाही गाय के।

0: तो इससे से वो डायरी नहीं खुल सके छे की।
1: देखियो संगे संग गर्मी के मास में आब जे जलवायु परिवर्तन भ रहल ते देखब जे हरेक पिछला वर्ष से अगला वर्ष जे 2 से 2.5 डिग्री तापक्रम बढ़ रहल
0: छै
1: ते जे माल जाल पोसे छै ते निश्चित रूप से स्थानीय जलवायु के अनुरूप जे स्थानीय नस्ल सब अइ ओकर पोषक चाही क्योंकि ओय में गर्मी बर्दाश्त करे के क्षमता होइ छै। तो सतो भाई ए संग आब जे छै आजुक के जागरूक गाम कार्यक्रम के समय संपन्न हेबा पै खेती गृहस्थी में सब किसान भाई लोकन के स्वागत करै छी
0: संगे
1: सब गोटे के नमस्कार। देखियो गर्मी हुए कि जार हुए कि बरसात हुए ये किसान भाई लोकन अन्नदाता बंधु लोकन अनवरत रूप से अपन काज में लागल रहे सामान्य वर्गक लोक सब हम अहा जे गाम में नहीं रहे छी अपन रोजी रोजगार में लागल रहे छी छाहर वाला स्थान खोजे छी मुदा ये किसान कतबो रौद रहे कतबो बरखा हुए कतबो ठंडा रहे अपन काज में लागल रहे छी। ते संगे संग देखब अहा सतो भाई जे हम अहा जो रोगी भ जाए छी कोनो व्याधि से आक्रांत भ जाए छी ते योग चिकित्सक लंग जाकर ओकर उपचार करबे मुदा जे अन्नदाता माइट ये माने खेत ओकरो स्वास्थ्य के रक्षा करब हमर अहा के धर्म है।
0: धर्म है
1: कि माइट के जो स्वास्थ्य नीक नहीं रहत तो उपजा नीक नहीं है आ उपजा नीक नहीं है तो हम सब खाएब की
0: वही के लेल अपने से पता तो नहीं कह सके छी किसान भाई के चाहिए जे मृदा स्वास्थ्य कार्ड जे होते वो निश्चित रूप से बना लेबा के चाहिए क्योंकि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जकरा सोयल हेल्थ कार्ड से हो कहल जात है एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जे किसान के ओकर खेत के माटि के स्वास्थ्य उर्वरता के सटीक जानकारी दैत अछि। ई माटि के उत्पादकता बढ़ावा कृषि लागत कम करवा आ किसान के आय वृद्धि करवा के लेल एक बेहद उपयोगी साधन अछि। कि किसान भाई के अनिल भाई इहो ध्यान देबाक चाही जे पोषक तत्व के सटीक जानकारी विशेषज्ञ जे रहै छथि उनका द्वारा देल जाइ छथि। ई कार्ड पर माटि के 12 प्रमुख मापदंड जना कि नाइट्रोजन भ गेल फास्फोरस भ गेल पोटास भ गेल जैविक कार्बन भ गेल जिंक भ गेल आयरन भ गेल बोरान भ गेल आदि के विश्लेषण क के दैत देल जात अछि आ खेत मे कोन पोषक तत्व के कमी अछि या अधिकता अछि एकर जानकारी ओहिमे लिखल रहैत अछि। ओहि अनुरूप यदि हमरा लोकनि खेती करै छी तऽ बेसी सँ बेसी उत्पादन होइत अछि। संगे खाद आ उर्वरक के सही उपयोग के सलाह सेहो देल जात अछि। किसान भाई अक्सर बिना जांच के अंदाज से बेसी यूरिया या डीएपी के उपयोग करै छथि। ई अहाँ के कार्ड फसल के अनुसार केवल वही पोषक तत्व उर्वरक के सही मात्रा की सिफारिश करैत अछि जकर वास्तव में खेत के आवश्यकता होइत अछि। ऐसा खेत में लागत में कमी आबैत अछि संगे फसल बेसी दिन धर उत्पादन दैत अछि। तो मृदा कार्ड किसान भाई के अवश्य बना लेबा के चाही और ई जे कार्ड है से बहुत बेसी उपयोगी होइत अछि।
1: देखियो मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत सरकार के एकटा योजना है एकर तहत किसान भाई लोकन के मंगनी में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के रिपोर्ट देल जाए ऐ में खेतक माटि में पोषक तत्व के कमी के विवरण रहिए फसल के उपजा बढ़ेबा में लागत के कम करबाक लेल संगे आवश्यक उर्वरक के प्रकार ओकर मात्रा के सटीक सुझाव देल जाए एकर विशेषता के संबंध में जो विचार करी तब परीक्षित पैरामीटर ई परीक्षण माटिक जे परीक्षण होइए 12 प्रमुख कारक के आधार पर कयल जाए जाहि में मैक्रो पोषक तत्व द्वितीयक पोषक तत्व आ सूक्ष्म पोषक तत्व इसकर सभक गणना सटीक रूप से कयल जाए। फसल संबंधी सुझाव सेहो देल जाइए कि अपने के खेत के जे माटिक परीक्षण के परिणाम के आधार पर अपने कोन खेत में केहन फसल लगाएब जाहि से बेसी उपजा प्राप्त हो सके संगे जेना ई जे वैधता हुई है एकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माटिक स्वास्थ्य जे समय के संग हो वाला परिवर्तन पर ध्यान रखवा।

0: लेल एकटा जे मृदा स्वास्थ्य कार्ड होइए सामान्य रूपसँ 2 साल धरि ओ मने वैलिड होइए। किसान भाई लोकनिकेँ जे छै से एकर लागत शुल्क एकदम नहि लगैए। लाभ की होइए किसान भाई लोकनिकेँ, फसिलके उपजाके लागत कम होइए, महग उर्वरक सबके बेसी व्यवहार आ कम मात्रामे रोकबासँ मदद करैए, उपजामे बेसी वृद्धि हेबे करैए, पोषक तत्वक कमीक पहचान करैए, जाहिसँ स्वस्थ फसिलके लेल आवश्यक सटीक इनपुटके व्यवहार कऽ सकै
1: छै। संगे माटिके सेहतके सुधार सेहो करबैत अछि। कार्डमे इहो सुझाव देल जाइत अछि जे भूमिमे गुणवत्ता सुधारबाक लेल माटिमे कोन आ कतेक मात्रामे कोन पोषक तत्व अछि, जाहिसँ अहाँके जैविक खादके लेल सलाह देल जाइत अछि, जिप्सम भऽ गेल, चूना भऽ गेल, ईसब डालबाके सलाह देल जाइत अछि, जाहिसँ लम्बा समय धरि उपजाउ आ स्वस्थ माटि बनत।
0: सतो भाई देखियौ, हमसब अन्नवला फसिल लै छी खेतसँ, तेलहन भेल, दलहन भेल, तीमन तरकारी भेल, एकर अतिरिक्त बहुत तरहक फसिल लै छी, मुदा हमसब विज्ञानक युगमे जीव रहल छी, समयक सङ्ग सोच बदलाव आवश्यक अछि। किछु एहन फसिल सब अछि जकर कम रकबामे जँ खेती करबै तऽ बेसीसँ बेसी नगदी आमदनी भऽ सकैए। आवश्यकता अइ ओकर कोना खेती करी, कोना सटीक ढंग से कोन कोन उन्नत प्रभेद अइ एकर जानकारी ली, तऽ आइ इएह विषय पर संबंधित एकटा भेंट वार्ता सुनै छी। भेंट वार्ता के विषय अछि स्ट्रॉबेरी की आधुनिक खेती, और भेंट वार्ताकार छथि हिमांशु शेखर, ई प्रखंड उद्यान पदाधिकारी वारिश नगर जिला समस्तीपुर में पदस्थापित छथि।
1: भेंटकर्ता छथि अनिल कुमार कन्न, प्रस्तुति छन असद दाऊद के।
0: तो सुनी हम सब ई दुनू गोटे के बीच जे गप भ रहल है,
1: सुनल जा।
0: किसान भाई लोकन, आइ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आइ आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में उपस्थित छथि प्रखंड उद्यान पदाधिकारी वारिश नगर समस्तीपुर हिमांशु शेखर। हिमांशु शेखर जी, अपने के आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, संगे अपने के नमस्कार।
2: नमस्कार अनिल कुमार जी।
0: आइ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में हम सब जे परंपरागत खेती हुई है, अन्न वाला फसिल, दालि वाला फसिल, तेलहन वाला फसिल, तीमन तरकारी वाला फसिल, एकर अतिरिक्त किछ नगदी फसिल सब सेहो अछि, जेना मिर्चाई भेल, कुसियार भेल, मुदा किसान भाई लोकनि आब सोच बदलऽ के आवश्यकता अछि। ओना सब तरहक खेती नीक होइए, मुदा बेसी आमदनीक लेल हमसब किछ एहनो फसिल लगा सकै छी जाहिसँ कम रकबामे बेसीसँ बेसी अपनेके लाभ भेट सकैए। ओ अछि स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीके आधुनिक खेती कोना करी, एहि सम्बन्धमे हिमांशु शेखर जी हम जानऽ चाहब कि सबसँ पहिने ती स्ट्रॉबेरी की अछि, किसान भाई लोकनिके एकर सम्बन्धमे विस्तारसँ कहल जाए।
2: जी, स्ट्रॉबेरी रबी में लगाबे वाला फसल यह, ई रोजेसी कुल के पौधा यह, उत्तर अमेरिका में एकर उत्पत्ति भेल यह, ओतय से ई संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के देश ब्रिटेन, फ्रांस एवं दोसर पर्वतीय अंचल एवं शीतोष्ण प्रदेशों में फैलल। एकर बाद भारत में एकर उत्पादन शुरू भेल, भारत के पर्वतीय भाग नैनीताल, देहरादून, हिमाचल आदि में व्यावसायिक तौर पर एकर उत्पादन शुरू भेल। आब एकर खेती मैदानी भागों में सेहो भ गेल, शुरू भ गेल। एहिमे अहाँ के सोलन, हल्द्वानी, देहरादून, रतलाम, नासिक, गुड़गांव आदि एकर खेती के लेल प्रसिद्ध है। बिहार के मिट्टी तथा जलवायु स्ट्रॉबेरी की खेती के लेल उपयुक्त है, एतय अहाँ के व्यावसायिक खेती एकर कैल जा सकैए। एकर जे फल होइए से लाल, गुलाबी और सुगंधित पौष्टिक तत्वों से भरपूर यह। 100 ग्राम जो स्ट्रॉबेरी के फल यह, वही में अहाँ के प्रोटीन, वसा, मिनरल साल्ट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लौह तत्व, आई के अलावा आई में निकोटिनिक एसिड और विटामिन सी और विटामिन बी1 सेहो पायल जाइए।
0: मने मूल रूप से गप करी तो

0: ई जे स्ट्रॉबेरी है एकर व्यवहार बहुत रास उत्पाद बनेवा में हुई है, संगे संग कम लागत में बेसी आमदनी कैल जा सकी है। तो एकर ये खास कर अपन उत्तर बिहारक लेल ये अनुशंसा कैल गेल अछि, ओ कोन कोन प्रभेद सब है एहि संबंध में कहल जाए।
1: जी अनिल जी, एहि में मतलब एकर जे रोपण के समय है से सितंबर से नवंबर मास तक रहे,
0: माने खेतक तैयारी में एखने से लग जेबाक चाही।
1: जी तो अहाँ के जेना कि दू तरह के प्रभेद है एहि में, अगेती और पछेती। तो जे आदमी सितंबर पहला सप्ताह से अक्टूबर पहला सप्ताह तक एहिमे लगाबे के सोच रहल छथिन, तो हुनका लेल अहाँ के जे किस्म विकसित कैल गेल यऽ जे जलवायु के उत्तर बिहार के अनुकूल यऽ, ओहिमे अगेती किस्म में डगलस, गोरिल्ला, फर्न, अलगिलो एवं तियोगा प्रमुख यऽ। एहि के अलावा जे अहाँ के पछेती जे किस्म यऽ आइ के ओकर रोपण कऽ सकै छी, तऽ ओहिमे जे प्रमुख किस्म यऽ चांडलर, डाना, सेल्वा और स्वीट चार्ली।
0: माने ई तऽ अखन एहि किस्म सबके फसिल में अखन टाइम है, अखन समय है, तो अखन जे लगले हुआ वाला काज है ओ माने एक दू मास में कऽ सकै छी, ओकर खेत के तैयारी केना करै छी?
1: जी एहिमे अहाँ के पहले खेत के जे छै से हम गहरा जुताई कऽ लेबै। गहरा जुताई केला के बाद जेना गर्मी में कऽ लेबै तऽ जे कीट और ओहिमे अहाँ के बीमारी हेतै सब खत्म भऽ जायत ओहिमे, और ओकर बाद अहाँ के पौध सामग्री के व्यवस्था करबै। पर एकर 44,000 से 45,000 अहाँ के पौध सामग्री हमरा रनर कहै छियै, जे अहाँ के ओहि के मतलब क्रीपर टाइप के लतरै यऽ, ओकर व्यवस्था करऽ पड़त हमरा। और ओकरा अहाँ के एहिमे हमरा सेहो जेना खेत के हम कहलियै गहरा जुताई करै के बाद पंक्ति या ओकरा अहाँ के क्यारी सेहो बनबऽ पड़ै छै। तऽ पंक्ति जे छै से ओकरा हमरा जे छै एगो पंक्ति जे अहाँ के ओकर 45 सेंटीमीटर मने पंक्ति से पंक्ति के दूरी राखि कऽ, पंक्ति के जे अहाँ के अथी 1 मीटर चौड़ाइ और ओकर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई और लंबाई अपना सुविधा हिसाब से रख सकै छिए।
0: माने एक पॉइंट से दोसर पॉइंट तक दूरी 45 सेंटीमीटर।
1: जी
0: ना?
1: ठीक कहलिए,
0: लंबाई अपने एकर सुविधा अनुसार रख सकै छी,
1: चौड़ाई 1 मीटर।
0: तो कत्ते दिन में लगभग ये फसल तैयार हो जाइए?
1: जी अहाँ के 8 सप्ताह 2 मास में तैयार हो जाइए।
0: तो एहिमे जे छै से बहुत तरहक रोग व्याधि लगैत हैत, पटौनी करऽ पड़ैत हैत, तो सिंचाई के लेल कोना की करऽ पड़ै छै?
1: जी अगर स्ट्रॉबेरी के अहाँ के गुणवत्तापूर्ण फल लै के यऽ तऽ बहुत नाजुक होइ छै एकर फल, तऽ एहिमे अहाँ के सिंचाई के बढ़िया से व्यवस्था करऽ पड़ै छै। तऽ ड्रिप सिंचाई हमसब रिकमेंड करै छियै एहिमे लगबै लए। तऽ ड्रिप सिंचाई जे छै से अहाँ के 40,000 से 65,000 प्रति एकड़ खर्चा लागै छै ओहिमे लगबै मे, और एकर अलावा अहाँ के मल्चिंग सेहो करऽ पड़ै छै। तऽ मल्चिंग जे छै से काला रंग के प्लास्टिक भेलै, प्लास्टिक के पॉलीथीन कहै छै ओकरा, पॉलीथीन सीट जे छै ओकरा अहाँ क्यारी के हिसाब से ओकरा बिछा कऽ ओहिमे ब्लेड से छेद कऽ कऽ जहाँ पेड़ जहाँ जहाँ जते दूरी पे होइ छै पेड़ के बीच से ओकरा बिछा कऽ सेट कऽ दै छियै। तऽ एहिसे की होइ छै जे अहाँ के खर पतवार जे छै से ओ नहि निकलत, ओकर बाद ई अहाँ के पानी के संरक्षित सेहो करैया, और एहिमे अहाँ के ठंडा के टाइम में चूँकि रबी सीजन क्रॉप यऽ तऽ मिट्टी के तापमान जे बढ़ाबै में काम करैया जे ओकरा मदद करतै।
0: अच्छा, तऽ आन फसिल जकाँ तऽ एहिमे सेहो स्ट्रॉबेरी के फसिल में बहुत तरहक रोग व्याधि सब लगैया, तऽ एकर रोग कोन कोन प्रमुख कारक अछि और एकर निदान कोना की करै छी से कहियो?
1: जी एहिमे फफूंदी जनित रोग एहिमे मुख्यतः यऽ। तऽ दूटा रोग एहिमे फफूंदी जनित यऽ, एगो पहला रेड कोर जे यऽ से एहिमे प्रभावित जे पौधा होइए ओकर आकार बहुत छोट भऽ जाइ छै, आ ओकर पात जे पत्ती से नील हरित शैवाल यानि ब्लू ग्रीन एल्गी के रंग जकाँ प्रतीत होत। ओहिमे प्रभावित पौधा के जड़ जे यऽ ओकरा अहाँ तोड़ि कऽ देखबै तऽ ओहिके बीच में लाल रंग सेहो देखाइ पड़त। तऽ एकरा कंट्रोल करै लए हम सब 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में रिडोमिल नामक एक फफूंदी नाशक दवा छै

0: फंगिसाइड है।
1: जी फंगिसाइड यह, ओ घोल का छिड़काव करवा दै छिए। एक छिड़काव से कंट्रोल भ गेल तो ठीक छै, नहीं तो फिर 15 दिन पे रिपीट कर केला से कंट्रोल भ जाइए। एकर बाद हमरा दोसर जे है से एमे अहाँ के जे रोग है वो अहाँ के दाग धब्बा एंथ्राकनोज एक फफूंदी छै, वो की करे छै कि पौधा के पत्ती तना एवं फल पर काला रंग के छोटा छोटा धब्बा बना दैए, तो वैसे अहाँ के गुणवत्ता खराब हो जाते फल के और बाद में वो पूरा पौधा के खराब कर देते। तो ओकरा कंट्रोल करे ले 0.15% अहाँ के मेंको जेब जे फंगिसाइड या फफूंदी नाशक ओकर घोल के छिड़काव कर देला से कंट्रोल भ जाता अहाँ के। आइ के अलावा अहाँ के कीट छे, तो कीट में सैप बीटल जे छे से की करे छे जे फल पक जाए छे तो ओहिमे छेद कर के ओकर रस चूस ले छे, जैसे ओकर गुणवत्ता प्रभावित भ जाए छे। तो आइ के लेल हमसब सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड छे इंडोसल्फान छे 0.5% के मतलब घोल छिड़काव करवा दै छिए तो वैसे नियंत्रण भ जाइए।
0: तो ये तो भेल कि माने फसल के सुरक्षा कोना करी, कीट व्याधि से कोना सुरक्षा कैल जाए। तो किसान भाई लोकन के इहो मन में होइ छथिन, ये जानकारी चाहे थे ता अहाँ से जे प्रति हेक्टेयर जो स्ट्रॉबेरी के खेती कैल जाए तो अइ में लागत कते लगे छे आ आमदनी के कतेक संभावना भ सके छे।
1: प्रति हेक्टेयर अहाँ के 6-7 लाख रुपया लागत छे, जाहिमे अनुदान सरकार अखन दऽ रहल छे अहाँ के 40% मतलब 3,36,000 रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से सरकार जे लाभुक छथिन हुनकर खाता में DBT पोर्टल के माध्यम से CFMS से पैसा ट्रांसफर भ जाए छे।
0: माने जो किनो किसान जे सकांच किसान भाई लोकन छै एकर खेती करऽ चाहे छै,
1: और जरूरी नहीं छै कि हेक्टेयर मतलब एकरो में कऽ सकै छथिन, ट्रायल करे के लेल देख सकै छथिन, ओहु में अनुदान भेटतै और ओकर खर्च कम भ जेतै।
0: किसान भाई लोकन के संग में एकटा आर समस्या होइ छै जे कोनो नव चीजक हम खेती आरंभ करै छी तऽ मान लिए कि उपजा खूब बढ़िया भ गेल तऽ ओकर विपणन आ वितरण के कोना की व्यवस्था छै, कतौ किसान भाई लोकन संपर्क कऽ सकै छै, कोना एकर बिक्री होइ छै एहि संबंध में कहल जाए।
1: जी एहिमे छै कि अहाँ के पहले पैकिंग एकरा बढ़िया से करऽ पड़ै छै, जेना कि फल अहाँ के यील्ड हमरा प्राप्त भ गेल तऽ ओकर बाद ओकरा हमसब छोटा एवं पारदर्शी प्लास्टिक के डब्बा जेकरा पेनेट कहै छियै, ओहिमे एगो पेनेट में 200 ग्राम फल भरि दै छियै, ओकर बाद एकरा गत्ता के 2 टुकड़ा के बीच में रख कर टेप से चिपका दै छियै, ओकर बाद सुरक्षित एवं संरक्षित परिवहन और विपणन के लिए वातानुकूलित वाहन में एकरा भेज दै छियै अहाँ के मार्केट। अब जेना एतय दलसिंहसराय में क्योटा एक छै रिलायंस फ्रेश के कलेक्शन सेंटर छै, तो ओतय किसान भाई सबसे कलेक्ट कऽ लै छथिन जे ओतय कलेक्शन सेंटर में छथिन। ओकर बाद जे अहाँ के दरभंगा सब में जे सेंटर छै रिलायंस के ओहिमे भेज दै छै। ओकर अलावा आइसक्रीम के जे बनै छै ओतय स्ट्रॉबेरी के बहुत डिमांड छै, ओहिमे मिला कऽ प्रोसेस कयल जाइए स्ट्रॉबेरी के।
0: तऽ सरकारक दिशसँ स्ट्रॉबेरी के खेती करऽ के लेल कोनो एहन योजना छै जाहिसँ किसान भाई लोकनि लाभ उठा सकै छै?
1: जी अपने सही कहलियै कि एहिमे स्ट्रॉबेरी विकास योजना यऽ जे मुख्यमंत्री अहाँ के उद्यान योजना के तहत बिहार में अखन चलि रहल यऽ। तऽ एहिमे 3,36,000 रुपया प्रति एकड़ यानी कि जे लागत छै ओकर 40% अनुदान में भेटैए किसान,
0: माने आधा से कम जे छै अपने के भेट जायत आ आधा से कनेक बेसी अपने के पूंजी लगवा पड़त। तो किसान भाई लोकन आवश्यकता अ सजग हेवा के सोच बदल के जे हम सब नव नव फसिल ओना ई फसिल पुरान अ एकर व्यवहार प्राय होत आयल हन अपनो सबक क्षेत्र में होइए, तो एकर जानकारी लऽ कऽ एकर खेती करी आ बेसी से बेसी लाभ उठाबी। तो हिमांशु शेखर जी अपने आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में एलों, किसान भाई लोकन के स्ट्रॉबेरी के आधुनिक खेतीक संबंध में नीक जानकारी दिलिए, ताहि लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद अनिल जी।
0: स्ट्रॉबेरी की आधुनिक खेती ई व्याख्याक भेंट वार्ता सुन रहल छलहुँ। भेंट वार्ता कर छलाह हिमांशु शेखर, हिनका संग गप कर रहल छलाह,
2: इनका संग गप कर रहल छथि अनिल कुमार कन्ह, प्रस्तुति छलनि असद दाऊद के।
0: तऽ नीक जानकारी भेटल। तऽ आब जे छै से चलैत चलैत हमसभ मौसम

0: संबंधी सूचना की है, इससे कह दियो किसान
1: भाई लोग। अधिकतम तापमान बना रहत 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहबा के अनुमान है, जखन कि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबा के अनुमान है। अधिकांश क्षेत्र में 812 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से मुख्य रूप से पूर्वा हवा चलवा के संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता भोर में 70 से 75% आ सांझ में से 20 से 25% रहबा के संभावना।
0: तो इछल मौसम संबंधी पूर्वानुमान 3 से 7 जून धर के। अब गीत नादक आनंद ली, सुनी हम सब एकटा सुंदर सन गीत
1: सुनल जा।

0: खूब सुंदर एखन जे हम सब गीत सुन रहल छलहुँ फसिल गीत गीतक कलाकार पूनम कुमारी एहि संग आब आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पे किसान भाई लोकनि सँ चलबाक आज्ञा लेल जाय।
1: नमस्कार अनिल भाई।
0: नमस्कार सत्तो भाई।

अभी आप सुन रहे थे खेती गृहस्थी और गामघर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से कुछ एक पल में।

0: AIR at 90. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कर उनके निकटतम परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम को मामले के हर बिंदु की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित उपचार के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पुलों के नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। पटना में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने मुंगेर परियारपुर भागलपुर सवेर सबौर फोरलेन गंगा पथ परियोजना का निर्माण पीपीपी मॉडल के तहत कराने को कहा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बढ़ती आबादी और यातायात की जरूरतों को देखते हुए ग्रामीण सड़कों की चौड़ीकरण की योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ग्रामीण सड़कों की नियमित निगरानी और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। श्री सिन्हा ने बताया कि राज्य में 3,76,000 मीट्रिक टन यूरिया, 1,54,000 मीट्रिक टन डीएपी, 2,38,000 मीट्रिक टन एनपीके और 1,17,000 मीट्रिक टन एसएसपी का भंडार उपलब्ध है। यह भंडार जरूरत के अनुरूप पर्याप्त है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक वितरण में अनियमितता की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता टीम गठित की गई है और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि रोजगार मेले के तहत मई महीने में 10,882 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने रोजगार प्रदान किया। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जुलाई महीने तक 20,000 और युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है।
2: 10,882 लोगों को अभी मई महीने में हमने रोजगार से जोड़ा और आगे फिर जुलाई तक, जुलाई से पहले

0: लिए हम लोग कम से कम 20,000 लोगों को और रोजगार से जोड़ेंगे और प्रत्येक 2 महीने पर यह रोजगार मेला लगाएंगे।
1: इधर विभाग की ओर से दरभंगा के अलग अलग प्रखंडों में आज से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेले 6 जून तक अलग अलग प्रखंडों में आयोजित होंगे। खगड़िया और मोतिहारी में भी आज एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अब 99% एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 96% से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना आवास पर आज पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, मंत्री दिलीप जायसवाल और रामकृपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विधान परिषद चुनाव को लेकर रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में जल्द ही सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस संबंध में एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है।
2: विधान परिषद के कौन कौन उम्मीदवार होंगे वो सब बड़े नेता मिल बैठ के तर्क रहे हैं। एक्सरसाइज जारी है, समीक्षा हो रही है, बहुत जल्द ही आप तक निर्णय पहुंचाएंगे।
1: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि राज्य में संगठन का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब डिजिटल माध्यम से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष तक का चुनाव होगा। श्री राम ने कहा कि पार्टी ने डिजिटल माध्यम से ही सृजन साथी नामक अभियान की शुरुआत की है जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं।
3: अपने चुनाव परिणाम से भूल को सबक को लेते हुए हम संगठन सृजन के माध्यम से अपनी संगठन को तैयारी कर रहे हैं। हम अपने संगठन को संतोषजनक हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये माध्यम इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी व्यक्ति अनुशंसा पर अब नहीं बनता है। संगठन सृजन साथी अभियान से ये ट्रांसपेरेंसी है और वही चयन होकर के आएंगे जो अपने आप को मजबूती दिखाएंगे।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को नई पहचान मिली है और करोड़ों लोगों ने इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाया है।
2: एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। हम प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते थे और तब यूएन में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव को समर्थन किया था। आज यह देखकर बहुत खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं।
1: दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने केरलम में दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून अपने तय समय से 3 दिन देरी से पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने कहा कि 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते मॉनसून बिहार में दस्तक दे सकता है। इसके बाद यह राज्य के अन्य हिस्सों में पहुंचेगा। अनुकूल परिस्थितियां रहने पर 25 जून तक पूरे राज्य में मॉनसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
3: दिनांक 5 जून राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है।
1: वयोवृद्ध फिल्म निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नीलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। पहलाज नीलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहलाज नीलानी के निधन पर दुख जताया है। श्री चौधरी ने कहा कि भारतीय फिल्म जगत में उनके योगदान और रचनात्मक कार्यों को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भागलपुर जिले के गोपालपुर के पोखरिया चौक के पास अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने कारोबारी के सिर में 7 गोलियां मारी जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पटना पुलिस ने एक कोचिंग संस्थान के सुरक्षा गार्ड द्वारा फायरिंग के मामले में 2 गार्ड को हिरासत में लिया है। घटना में प्रयुक्त हथियारों को जब्त कर FSL जांच के लिए भेज दिया गया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र के कोढ़ी चौक के पास पुलिस ने छापेमारी कर एक यात्री बस से 708 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के हनुमान चौक के पास पुलिस और SSP की टीम ने 110 किलो गांजा के साथ 1 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहानाबाद जिले के

0: थाना क्षेत्र और परसा बिखा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 700 लीटर शराब और बियर बरामद की है। गया रेलवे स्टेशन पर रेल सुरक्षा बल और जीआरपी की टीम ने 3 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत आज शिवहर के तरियानी प्रखंड के अलग अलग गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शेखपुरा मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। रोहतास जिले के आलमपुर पंचायत भवन में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा सखी वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सीनियर अंडर 23, अंडर 19 और अंडर 15 वर्ग की T20 और वनडे प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। प्रतियोगिताओं की शुरुआत 8 जून से होगी और मैच पटना, भागलपुर तथा सोनपुर के विभिन्न मैदानों पर खेले जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में अगलगी की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हुई। मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को प्रदेश के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट कराने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यूरिया समेत किसी खाद की कोई कमी नहीं है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। और मॉनसून ने केरल में दी दस्तक, 18 से 20 जून के बीच पूर्णिया और किशनगंज के रास्ते बिहार पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
3: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत शेखपुरा जिले के 3 पंचायतों के मुखिया को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इन जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में पंचायत प्रगति सूचकांक के अंतर्गत स्थानीय लोगों की भलाई और तकनीकी व्यवस्था के बेहतर उपयोग के लिए आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शेखपुरा के केवटी ग्राम पंचायत के मुखिया दीपक कुमार, डी कुसुम्भा के मुखिया साधु चौधरी और महासार के मुखिया मथुरा यादव शामिल हैं। इन तीनों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मानित होने पर शेखपुरा में खुशी की लहर देखी जा रही है। शेखपुरा जिले के

0: बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सामस बुजुर्ग पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 53 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। साथ ही वे सामस पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को लटका कर रखना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
1: यदि आपने कोई आवेदन दिया 10 दिन तक यदि कोई कार्रवाई हमारे कर्मचारी के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया तो 11वें दिन उसको मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं नोटिस देने का काम करता है, और यदि 30 दिन में नोटिस की अवहेलना करता हो तो 31वें दिन वो स्वतः निलंबित हो जाता है।
0: इधर जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित इस सहयोग शिविर में 90% मामलों का निपटारा समय से पहले कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह शिविर प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। भारत की जनगणना 2027 के तहत जिले में पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की गई। इस दौरान जिले में कुल 1,87,605 घरों का सूचीकरण किया गया, जिसमें 1,46,513 परिवारों की गणना की गई। प्रगणकों ने लोगों से 33 प्रकार के प्रश्नों की जानकारी ली, जिनमें मकान की स्थिति, रसोई, शौचालय, यातायात के साधन, रोशनी की व्यवस्था आदि शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेखपुरा की अनुमानित जनसंख्या 8,96,082 आंकी गई है, जो 2011 की जनगणना की तुलना में लगभग 40% अधिक है। 2011 में शेखपुरा की जनसंख्या 6,36,342 थी। पहले चरण का कार्य पूरा होने के बाद जिला प्रशासन अब अगले चरण की तैयारी में जुट गया है। शेखपुरा जिला भीषण गर्मी से जूझ रहा है। पिछले दिनों मौसम के बदले मिजाज के दौरान तेज हवा के साथ बारिश से तापमान में कमी आने के कारण मौसम सुहावना हो गया था और लोगों ने खरीफ फसल की शुरुआत को लेकर धान के बिचड़े डालने, मकई, अरहर आदि की बुआई के लिए खेतों की जुताई का काम शुरू किया था। लेकिन इसके बाद बारिश के रुकने और मौसम के बदलने के बाद शेखपुरा का तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी के बीच जिलाधिकारी शेखर आनंद ने लोगों से पेयजल की बर्बादी न करने की अपील की है। उन्होंने जिलावासियों को पेयजल समस्या को लेकर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने की सलाह दी है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 24 से 72 घंटे के बीच किया जा सके। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शेखपुरा जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। 29 मई से 31 मई तक चले इस चैंपियनशिप में शेखपुरा की टीम ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि पटना इस चैंपियनशिप का विजेता बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 12 वर्षों के शासनकाल पूरा होने पर जिले के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने उनके शासनकाल में आधारभूत संरचनाओं के विस्तार की जमकर प्रशंसा की। इसके अलावा लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भी लोगों ने सराहना की तथा उनके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम काल बताया।
2: चंद्रभूषण शर्मा विलासपुरा का निवासी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष पूरे होने में बहुत से इन्होंने विकास के कार्य किए हैं। कोरोना काल में देश में जनता की जान को बचाए हैं और रेल का यातायात साधन का भी विकास किए हैं और विदेश नीति में भी इन्होंने बहुत से कार्य को सफल बनाए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ, उनका भारी मानता हूँ।
0: राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत शेखपुरा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से रासायनिक खाद के कम प्रयोग, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी के संरक्षण पर आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
3: अभी आप सुन रहे थे शेखपुरा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिए। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत और अलका याज्ञी की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हिमेश रेशमिया और फिल्म का नाम है हमको दीवाना कर गए। लीजिए पेशे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: वो तेरा नाम था। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। शब्दकार थे निदा फाजली, संगीतकार सुमित चोपड़ा। दिल जले, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक।
1: वो तो
2: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
2: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
2: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
2: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
3: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार।

मैथिली साहित्यिक आ सांस्कृतिक कार्यक्रम सिंगरहारक आजुक अंक में स्वागत है अपने सब साहित्य प्रेमी श्रोता बंधु के। इस साहित्यिक यात्रा में अहां सबक संग अहाक साहित्यिक सहयात्री छी हम सोनू। आधा घंटाक एक कार्यक्रम में साहित्यिक गपशप करब, कोनो वार्तो सुनब, शब्द विमर्श सेहो करब आ गप करित करित जखन मोन उभिया लागत तखन गीतनाद सेहो सुनब। असे सिंगरहारक सब अंक में हम सब सुनैत छी।

लोक लोक मने भेल आम जन, हम आहा यानी जत्ते समाजक जे लोक छी, व्यक्ति व्यक्ति छी, सब मिलक भए छी लोक। आ दोसर शब्द छै गीत, माने गाओल जाय वाला। तो ओहेन गीत जे व्यक्ति आम जन जे अछि तक्कर जे मोनक पीरा छै वा खुशी छै, हंसी छै, राग छै, उपराग छै, तकरा कहवाक लेल, तकरा बुझेवाक लेल जे स्वर के माध्यम सँ निकसैत अछि, निकलैत अछि, तकरा लोकगीत कहल जाइत अछि। लोकगीत के से विभिन्न रास प्रकार सब सेहो होइत अछि। लोकगीतक माध्यम सँ से लोक जखन अपन भाव के व्यक्त करैत अछि तऽ ई बुझबा मे भांगठ नहि रहि जाइत अछि जे ई कोन अवसरक गीत अछि। कारण जे लोकगीत मे सब अवसर विशेषक गीत उपलब्ध होइत अछि। आ ताहू सँ पैघ बात तऽ ई अछि जे लोकगीत कहिया सँ आरंभ भेल, कहिया सँ लोक एकरा गायब शुरू केलक से व्याख्याब कठिन अछि। कारण जे ई तऽ अदौ काल सँ अहिना एक पीढ़ी सँ दोसर पीढ़ी धरि हस्तांतरित होइत चलि आबि रहल अछि। आब जेना कि कहलहुँ हैं जे सब अवसर विशेषक अलग अलग गीत होइत छैक, तऽ निश्चित ही छै जे सभक भास सेहो भिन्न भिन्न हेतैक। आ जखन से एहिठाम बैस कऽ हमरा लोकनि लोकगीतक विषयमे गप कऽ रहल छी तऽ किएक ने टा जे प्रसिद्ध गीत अछि, लोकगीत अछि, लोकगीतक जे विधा अछि, अवसर विशेषमे जे गीत गाओल जाइत अछि, जे विभिन्न जे अवसर होइत अछि ताहि पर से गाओल जाइत अछि। जेना जन्मके अवसर पर निश्चितहि गाएल जाइत अछि, वा आन जे कोनो विशेष उत्सव रहैत छै ताहिमे सेहो गीत गाओल जाइत अछि। विशेष कऽ कऽ जखन कोनो संस्कार से देल जाइत छै तखन से सेहो गाओल जाइत अछि। मने आरम्भिक गीत ई छी, मनुष्य जीवनक जे आरम्भ होइत अछि, जन्म लैत अछि नेना, तखन जे गीत गाओल जाइत अछि, मने सोहर गाओल जाइत अछि। तऽ आउ ने किए ने एकटा सोहर के आनंद लेल जाए।

सुनलो एकर अपन भाष्य सोहर के। अच्छा एकटा बात आर छै बंधु लोकनि, लोकगीतक ई अपन खासियत छै जे जतेक गीत छै सभक अपन अपन भाष्य छै से भिन्न भिन्न छै। अच्छा एकटा चीज छै जे कोन गीतक भाष्य कोन हेतै से कहिया बनलै के बनेलक इहो कोनो जानकारी निठाह भकर नहि अछि, मुदा ई तय छै, ई निश्चित छै जे ओहि भाषमे वएह टा गीत गाओल जाइत छै आ तखन ओ जे गीत छै तकर से सौन्दर्य सेहो भेटैत अछि। लोकगीतक सौन्दर्य तहिना अछि से सौफ गीतक अछि, कारण जे लोकगीत तऽ एक कंठसँ निकलैत अछि आ दोसर व्यक्तिक कानक रस्ते हृदयमे बास लऽ लैत अछि आ पुनः समय पाबि ओ अजस्र धार बनि प्रवाहित होइत रहैत अछि आ अपना संगे अपन संस्कृतिकेँ सेहो प्रवाहित करैत रहैत अछि। पहिने कहलहुँ हैं जे लोकगीतक अनेको प्रकार अछि, भिन्न भिन्न प्रकारक अछि, से भिन्न भिन्न अवसर पर गाओल जायवला गीत सब सेहो भिन्न भिन्न होइत अछि। अब जेना देखियौ, एखने हमसब सुनलहुँ सोहर जे नैनाक जन्मक अवसर पर गाओल जाइत अछि, तकर बाद से ओकर जे भिन्न भिन्न संस्कार छै नन्नाके ताहि अवसर पर सेहो गाओल जाइत अछि, जेना ब्याह गीत, उपनयन गीत, मूड़नक गीत, आकि फेर जहन विवाह गीतक अवसर बात करै छी तऽ विवाहमे जे भिन्न भिन्न विध छै ताहि सब विधक सेहो भिन्न अलग भिन्न भिन्न गीत अछि। से ई खासियत मात्र लोके गीत टा मे भेटैत अछि। ई तऽ भेल ब्याहक अवसर पर गाओल जाय लेल, तकर का बात देखियौ ने जे एहिसँ अतिरिक्त जे आन से हमरा सभक जे अवसर अछि ताहि अवसरक सेहो गीत सब अछि लोकगीतमे, जेना पूजा पाठक समयमे गाओल जायवला भक्ति गीत अछि, श्रम गीत अछि, ऋतु गीत अछि। तऽ ई जे सब अवसर पर गाओल जाइत अछि लोकगीत, तकर जे सौन्दर्य छै से अद्भुत होइत अछि। जेना जखन हमसब पूजा पाठ करैत छी वा ईश्वरक आराधनामे लीन रहैत छी तखन भक्ति गीत गबैत छी, सुनैत छी, ओहूमे से भिन्न भाषक गीत सब छै, जेना नचारीके अलग भाषा छै तऽ महेशवाणीके अलग भाषा छै, तहिना जखन देवी गीत गबैत छी तऽ ओ अलग भाषक गीत भऽ जाइत छै। तकर बाद से श्रम गीत अछि, श्रम परिहारक गीत सब अछि, जेना लगनी, जाँत पिसवा काल जे गीत गाओल जाइत अछि तकरा हमसब लगनी कहैत छियै। आ लगनी के अतिरिक्त जेना फसल के जखन कटनी होइत अछि तखन सेहो हमसब गीत गबैत छियै, रोपनी के समय में सेहो गीत गाओल जाइत अछि। ई सब गीत की अछि, एकरा श्रम परिहारक गीत कहल जाइत अछि आ सब गीतक से भास भिन्न छै। ओहि भासक गीत जखन केओ
टेरैत अछि।

हाँ तऽ बंद लोक हम सब गप कऽ रहल छलहुँ हैं लोकगीतक सौन्दर्य जे विभिन्न अवसर पर गाओल जाइत अछि, तऽ एखने हम सब सुनलहुँ ई छल भगवती गीत मने भक्ति गीत। एकर जे भास छलैए से देखलिए जे भिन्न भास छलैए, तऽ अहिना से हमर जे लोकगीत सब अछि तकर से भिन्न भिन्न भास छै, ओकर अपन सौन्दर्य छै आ सबसँ पैघ

मने भक्ति गीत एकर जे भास छलिए से देखलिए जे भिन्न भास छलिए अहिना से हमर जे लोक गीत सब अछि तकर से भिन्न भिन्न भास छै ओकर अपन सौंदर्य छै आ सबसे पैघ बात त ई जे हमर संस्कृति निर्भरता लोकगीत पर सेहो अछि हमरा सबक जे लोकगीत के बचा कर रखबाक चाही ओकर जे अपन भास से ओकरा ओही भास पर रह दिए त आर नीक लगते सुनबा में आ देखो जे हमरा सब कार्यक्रम में सब दिन शब्द विमर्श करै छिए त से समय भ गेल अछि शब्द विमर्शक सेहो एहि क्रममे आओ किछु शब्द पर सेहो गपशप कऽ ली एहि क्रममे एकटा शब्द अछि पन्ही पन्ही मने होइत अछि पैरमे पहिरल जायवला मने चप्पल जूता दोसर शब्द छै मुन्ही मुन्ही कहल जाइत अछि कोनो अनाजके जे एकदम छोट भऽ गेल दाना अछि जे पूरा विकसित दाना नहि रहैत अछि तकरा मुन्ही कहल जाइत अछि आ एकटा शब्द अछि चटुआ चटुआ मने चटुआ छोट सनक लकड़ी एहन बनायल रहैत अछि पीढ़ी जकाँ जे चुक्की माली बैसबाक काज अबैत अछि ई छल आजुक शब्द विमर्श आब देखो जे कार्यक्रमक अंत अंतमे हमसब आबि गेल छी तऽ जेनाकि हमरा सभक परिपाटी रहल अछि जखन समापन करै छी कोनो चीजक तऽ समदाउन गबैत छी आ ताहूमे जखन आइ हमरा लोकनि लोकगीतक गप कऽ रहल छी तऽ समदाउन तऽ निश्चित होइत अछि ने ओकरो अपन एकटा अलग भास छै आओ चलैत चलैत हमरा लोकनि ई समदाउन सुनैत चली

रामनाथ यादवक गाओल ए समदाउनक संगहि आजुक सिंगरहार संपन्न होइत अछि। सोनू के चलवाक आज्ञा देल जाय। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। समाचार संध्या थोड़ी देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को

0: नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की

0: प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिनसे, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
4: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
2: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
5: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान

0: में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई, लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
2: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
1: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Union Home Minister Amit Shah today said the Narendra Modi government entered the era of violence in the Northeast and transformed the region from a hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council or NEC, Mr. Shah, in a social media post, said today that NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture. In the NEC

0: TKGs surged into the top three of their respective categories. In men's section, Sachin Sivaj and Narinder Berwal broke into the top five following a sustained run of international success. The southwest monsoon has arrived in Kerala today. The India Meteorological Department, or IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, Delhi NCR today witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm and humid conditions. IMD also predicted very light and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lemboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top three. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। भारत ने इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से चलने वाली पहली फ्लैक्स फ्यूल मुसाफिर गाड़ी का आगाज़ किया है। जुनूब मगरबी मानसून केरलम पहुंच गया है। IMD ने आइंदा 7 दिनों में केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर एक खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया घंगास और विश्वनाथ सुरेश टॉप थ्री में पहुँच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरिकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादले ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में शराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रुनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में तशद्दुद के अहद को ख़त्म कर दिया और इस खित्ते को तनाज़ों के एक मरकज से बदल कर मौाक़े का मरकज़ बना दिया है। शुमाल मशरक़ी कौंसिल NEC के 73वें मुकम्मल इजलास में शिरकत के बाद जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि आज NEC खित्ते की तरक्की के लिए कलीदी मनसूबाबंदी के एक इदारे के तौर पर काम कर रही है, साथ ही वो लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फ़रोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वज़ीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमन व क़ानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हकूक کے تحفظ پر توجہ کریں کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں۔ جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ عود کی لکڑی

देने पहुंचा है। एक भारतीय निजात दिल के इमराज के माहिर सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए ग्याना से भारत में तवील फासले की रोबोटिक टेली सर्जरी कामयाबी के साथ अंजाम देकर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। ये टेली सर्जरी ग्याना में जॉर्ज टाउन पब्लिक अस्पताल और इंदौर में IRCAD इंडिया के दरमियान रिमोट तरीके से अंजाम दी गई है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाक़े में ज़ख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने ज़ख्मी अफराद और उनके कुंबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में मालूमात हासिल कीं और अहदेदारान को सभी ज़रूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाक़े में हलाक होने वालों के कुंबों को 10-10 लाख रुपये की नकद इमदाद का ऐलान किया गया है। शदीद तौर पर ज़ख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुनूब मगरबी मानसून आज केरलम पहुंच गया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 7 दिन के दौरान केरलम और कर्नाटक में ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बारिश और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की है। कल माहे पुडुचेरी और क्राइकल में बहुत और बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और शुमाल मशरक़ी रियासतों में बहुत ज़्यादा बारिश की पेशगोई की है। इधर दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में आज तेज़ बारिश हुई जिसके सबब गर्मी और हब्स की सूरत हाल से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आज रात हल्की और बहुत हल्की बारिश की पेशगोई की है जिसमें बिजली की गरज चमक भी शामिल है। जकार्ता में हुए इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज एक सख्त मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी आरुनताई और कांगखाई शिंग को 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त दी है, जबकि सिंगल जुमरे में PV सिंधु और आयुष शेट्टी के अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिकस्त के बाद भारत की मुहिम ख़त्म हो गई है। भारत ने मुक्केबाजी की हालिया आलमी दर्जा बंदी में अपनी मजबूत पोजीशन बरकरार रखी है। ख्वातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 पर पहुंच गई हैं, जबकि एशियाई चैंपियंस प्रिया घंगास 60 किलोग्राम और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम के अपने अपने जुमरे में टॉप 3 में पहुँच गए हैं। ख्वातीन के जुमरे में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम के जुमरे में आलमी नंबर 1 का अपना मकाम बरकरार रखा है, जबकि मर्दों के जुमरे में सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल बैनुल अक्वामी पैमाने पर मुसलसल कामयाबी हासिल करने के बाद टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरक़ी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज़ करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। गीतकार थे संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। प्यासा सावन, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रही थी दिले नादान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार थी नक्शलाल पोड़ी, संगीतकार खय्याम। गूंज उठी शहनाई, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। शब्द रचना भरत व्यास की है, धुन बनाई है वसंत देसाई ने।

गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गायक कलाकार मुकेश और लता मंगेशकर। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण कुछ एक पल में।

0: ये आकाशवाणी है।
1: आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Horama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया।

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं मैं अमीना हुसैन। नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी के कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा, जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नाही। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूँ एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण सतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार।

आढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमार से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल

0: current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। समाप्त होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:45 पर पहली सभा आरंभ होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।